ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नेहा बेनीवाल आपके साथ रहेंगी। सुबह 7:05 पर गौतम गौर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 8:00 नेहा बेनीवाल आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और सुबह 9:00 गौतम गौर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं और साथ में कुछ पुराने गीत भी। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर, इसमें शालिका कपूर आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:05 पर संतोष राव आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें बॉलीवुड की जानकारी और गीतों का आप आनंद ले सकेंगे। दोपहर 12:05 पर शालिका कपूर आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे संतोष राव के साथ कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। दोपहर 2:00 मुनीश जौली आएंगे आपके लिए कार्यक्रम लेकर आशियाना। दोपहर 3:00 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें सीमा सती आपके साथ होंगी। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और आज का इसमें विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर विनय गोयल। शाम 4:00 मुनीश जौली आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम होता है। आज के इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे श्री ललित शाह, सेकेंड इन कमांड। शाम 5:05 पर सीमा सती आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जिसमें दिल्ली शहर की जानकारियां आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ पसंदीदा गीत होंगे। और शाम 6:05 पर गीता चौधरी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम मसाला मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें श्रोताओं की पसंद के गीत आप सुन पाएंगे। शाम 7:05 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक हिट्स एंड मेमोरीज का, इसमें 1930 से 1932 के जो है आप इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट्स आप सुन पाएंगे। उत्कर्ष इसमें आपके साथ रहेंगे। रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें नॉनस्टॉप डांस हिट्स का मजा आप ले सकते हैं। गीता चौधरी इसमें आपके साथ रहेंगी। रात 9:00 कार्यक्रम रहेगा आपकी याद आती रही, इसमें ताहिर हसन आपके साथ रहेंगे। रात्रि 10:05 पर उत्कर्ष लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक ऑल दैट जैज। और रात्रि 11:05 पर आप सुन पाएंगे पसंदीदा गजलें रंगे महफिल में, जिसमें ताहिर हसन आपके साथ रहेंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 6:00 वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2000

0: 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया एकेडमी।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अक्सर हमें अपनी जिंदगी से ढेर सारी शिकायतें रहती हैं। कभी ये न मिलने का मलाल, तो कभी मन मुताबिक न होने का शिकवा गिला। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब जब तुम्हारा मन व्याकुल हो या फिर किसी बात के लिए परेशान हो, तब तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में तुमको तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, हर मुश्किलों का समाधान भी।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब इंसान की सारी युक्तियां विफल हो जाती हैं और उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तब ईश्वर ही उसको संभालता है, उसको सही राह दिखलाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु पर भरोसा रखने वालों के लिए अनहोनी बात भी होने में बदल जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान लगने लगती है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तूफानों का रुख मोड़ने वाला और समुद्र के बीच से रास्ता बनाने वाला ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जिसके सम्मुख कुछ भी असंभव नहीं। बस हमें दिल से उसको पुकारना है और उस पर भरोसा रखना है, तभी हम उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते देख पाएंगे।

जी हाँ, यही सच्चाई है कि हमारे आंसुओं को पोंछकर हमें शांति देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। इसीलिए ना तो डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की। इसी विश्वास के साथ कि आप सब प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे, हम लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से हम जो यहाँ प्रेजेंटर्स हैं बहुत प्यार करते हैं। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर। कार्यक्रम सुप्रभात चल रहा है, मेरा नाम है नेहा। समय बता दें आपको, सुबह के 6:25 और 5 सेकेंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जहाँ बातें होती हैं जीवन के बारे में और कोशिश रहती है कि एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के साथ कुछ ऐसी बात हो जो दिल को छू जाए। अब एक बात मेरे जहन में थी कि चेंज इज द

ओनली कांस्टेंट, यानी कि बदलाव हम देखते हैं अपने आसपास, और ये हमेशा नित्य निरंतर हमारे आसपास होता रहता है, लेकिन ये बदलाव हम अपने भीतर कितनी तीव्रता से लेकर आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं बदल सकती, उन्हें बदलने की जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं, होड़ में लगे रहते हैं और परेशान होते हैं। अब ये स्वीकार कर लेना हमें चाहिए कि जो बदल जाए उसे बदल लो, और जो ना बदले उसे स्वीकार कर लो। कितना आसान हो जाएगा ना जीवन हमारे लिए, अगर ये छोटी छोटी बातें हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, और जो परेशानियां, जो एक बेचैनी सी हमारे मन में आ जाती है ना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये बेचैनी बिल्कुल जाती रहेगी अगर ये छोटी छोटी बातें हम अपने जहन में बिठा लें कि हमें वही बदलना है जो बदलने के लायक है, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लीजिए।

साथियों, कहा गया है कि पेड़ की ऊंचाई नहीं, उसकी छांव बताती है कि वो कितना बड़ा है। ये बात हम अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हैं। इंसान भी अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। जीवन में ऊंचा पद, धन या प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की वास्तविक महानता का प्रमाण नहीं होते। एक व्यक्ति कितना बड़ा है, इसका पता इस बात से चलता है कि उसकी उपस्थिति से दूसरों को कितना सुकून मिलता है, उसके शब्दों में कितनी संवेदना है और उसके व्यवहार में कितनी विनम्रता शामिल है। जिस तरह एक पेड़ अपने फल और छांव का हिसाब नहीं रखता, उसी तरह सच्चा इंसान अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन नहीं करता। वो दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करता है। आखिर में लोग हमारे पद या उपलब्धियों को नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और उनसे मिले अपने अनुभवों को याद रखते हैं। इसीलिए जीवन में बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 6:39 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा और यहाँ सुप्रभात में बातें हो रही हैं, साथ में मधुर संगीत का आनंद हम और आप मिलकर ले रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि सुबह के वक्त जब हम अपने ऑफिस के लिए या घर के कामों के लिए तैयारियाँ कर रहे होते हैं, ऐसे में ऑन द गो अगर हमें अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए तो सच में मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जब मैं आपकी तरह रेडियो पर नहीं होती हूँ, घर पर होती हूँ, बाहर होती हूँ, तो मुझे चलते फिरते अच्छा संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये प्यारा सा गाना सिर्फ आप सभी श्रोताओं के लिए है।

दोस्तों, जीवन में हर काम की अपनी अहमियत होती है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार मानते नहीं हैं। जब हम अपने काम को केवल जिम्मेदारी के साथ नहीं बल्कि लगन और आनंद के साथ करते हैं तो मेहनत बोझ नहीं लगती और छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणामों का रूप ले लिया करती है। इसीलिए हमेशा किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा करने की बजाय जो काम हम आज अपने हाथ में लिए हुए हैं उसे पूरे मन, ईमानदारी और प्यार के साथ अगर हम करते हैं तो हमें अपने काम में मज़ा आने लगता है, वो काम बोझ या तकलीफ नहीं लगता। अक्सर महानता काम के आकार में नहीं उसे करने के नज़रिए में छिपी होती है। इसीलिए महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उसे प्रेम के साथ करें, यानी कि एंजॉय द वर्क दैट यू डू। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम अक्सर सुनते हैं, इस पर विचार भी करते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऑफिस में बहुत काम है, कई बार चिक चिक हो जाती है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। ऐसे में हम क्रिब करना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम अगर रखें और बैठ कर विचार करें तो उस काम को अगर हम एंजॉयमेंट के साथ करेंगे और इस बात का शुक्राना हम करेंगे कि हमारे पास काम है, वो काम हमें ऊपर वाले ने चुन कर दिया है, तो वो काम हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करेगा।

0: रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो वक्त होता है ना, कभी कभी मुझे इससे बहुत शिकायत होती है कि जब ये आपके साथ बिता रही होती हूँ तो बहुत जल्दी बीत जाता है। अब देखिए, इट्स 6:52 बाय द रेनबो क्लॉक और बहुत कम वक्त रह गया है आपके साथ कुछ और बातें करने का। और इस वक्त में आपको बताना चाहूंगी कि आगे कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आप सुनने वाले हैं FM रेनबो दिल्ली पर। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 7:00 होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर वक्त रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग डेली NCR सुनने का। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे गौतम गौड़। इसके बाद 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग डेली NCR का दूसरा घंटा जारी रहेगा, जिसमें मैं नेहा मुखातिब रहूंगी आपके साथ और बातचीत करेंगे कि दिल्ली NCR में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद 9:00 से 10:00 के बीच में आप सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम यह होता है। अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं, जो मुझे पता है कि आप हैं, और आपको नए और पुराने जमाने के गानों का आनंद लेना होता है, तो आप रोजाना 9 से 10 के बीच में आकाशवाणी के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत मजेदार गाने यहां पर हर दिन रोजाना प्ले होते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे फोन इन प्रोग्राम के बारे में, जो दोपहर 3 से 4 के बीच में विशेष प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली का होता है। रेडियो डॉक्टर, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी सेहत के बारे में बात करता है और हमारा प्रयास होता है कि जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो डॉक्टर के साथ, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आप सीधे सवाल पूछकर उनसे बात कर सकते हैं। तो आज का विषय रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ये विषय रहेगा। आज के एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर विनय गोयल, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और ये कार्यक्रम आप दोपहर 3 से 4 के बीच में सीमा सती के साथ जरूर सुनिएगा। और साथ ही इसी तरीके से आकाशवाणी दिल्ली पर पूरे 24 घंटे कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है। हर घंटे एक नया कार्यक्रम होता है, न्यू प्रेजेंटर होता है, नई थीम होती है, नया विषय होता है, नई जानकारियां और बेहतरीन संगीत का साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर दिल्ली NCR में आप सुन रहे हैं तो 102.6 के माध्यम से आप सुन रहे हैं, और विभिन्न माध्यमों से आप विश्व भर में आकाशवाणी को सुन पा रहे हैं। और आप सभी से अब अनुमति लेने का वक्त नजदीक आ गया है। चलते चलते वही कुछ बातें जो हमेशा मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, कि हम सभी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे और हाँ, अपने आसपास जो वातावरण है उसको साफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे बिल्कुल भी, और जो नियम कानून हमारे देश में है उनका बहुत अच्छे से हम पालन करेंगे, क्योंकि यही एक पहचान है कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक प्यारा सा गाना गोविंदा की फिल्म से आप सभी के लिए पेश हो रहा है आज के शो का आखिरी गीत। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से आकाशवाणी के साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना

0: सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कि हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से है निभाई, रास्ते भी खुद ही ढूंढे और मंजिल भी खुद ही है बनाई, मंजिल से पहले रुकना नहीं और हौसले के मामले में कभी झुकना नहीं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सारे। समय हो गया है क्या आप जाग जाइए, 102.6 FM दिल से दिल तक।

वेक अप, जाग जाइए एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कॉपी टू ऑल, आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। और साइंस में आपने पढ़ा होगा एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये पढ़ा होगा ना आपने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलो थोड़े सच्चे बन जाते हैं, एक बार फिर से बच्चे बन जाते हैं। जी हाँ, आज है 11th ऑफ जून, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेलना केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर 2026 की बात करें, थीम है खेल को सुरक्षित रखें, बचपन को सुरक्षित रखें। तो चलिए एक बार फिर से वो बचपन के दिन खो जाते हैं, वो दिन भी क्या दिन थे ना, याद आ जाते हैं।

वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। लेकिन अब कैसे मिलेगी शांति, यही है जीवन की सबसे बड़ी क्रांति। एंड वो तो मिल जाएगी आपको, मैं अगर कहूँ योगा से ही होगा। जी हाँ, वैसे मैं तो हर रोज योगा करता हूँ सोने के बाद और उठने से पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अपने हेल्थ को और मानसिक शांति को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनकर हमारे सामने आता है। योग हमें सिखाता है कि कैसे शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित रखा जाए। आरोग्य पथ हमें ये संदेश भी देता है।

एक स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। लेकिन छेड़ दी आपके दिलों की तार। 102.6 FM।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, कैसे हो भाई? सारे दिखा दे एक बार फिर से तारे। वेल, नमस्कार तो मैंने कर लिया है, लेकिन आपका उठने का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर 102.6 एफएम पर आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके साथ जुड़ चुका है। और कहा जाता है कि वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है देश के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम चाहे दिन चार रहें या ना रहें। सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर एक अलग ही क्रांति लाई। आज बर्थ एनिवर्सरी है श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नमन है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसी पर्सनैलिटीज का नाम रहेगा।

वेल, मैंने ना अक्सर नोटिस किया है कि अगर ज्यादा लेजीनेस लगती है ना, तो फिर आराम चाहिए तो घर का सोफा, और अगर जन्मदिवस है तो फिर चाहिए तोहफा। गिफ्ट हर किसी को पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। वेल, एनीवेज, हम बर्थडे की बात करेंगे। एंड मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये नाम आपने सुना ही होगा, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वह पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन है। वह 2020 में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची और टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर की लिस्ट में उन्हें रखा है। विश्व प्रसिद्ध बारबी डॉल निर्माता कंपनी ने मानसी जोशी के सम्मान में और लड़कियों को प्रोत्साहित करने की मंशा से उनके जैसी दिखने वाली वन ऑफ द काइंड बारबी डॉल भी बनाई है। तो जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 एफएम, दिल से दिल तक। और एक विचार आ रहा है कि ठोकर खाकर भी सीधा खड़ा हूं, देखो मुसीबतों में तुमसे कितना बड़ा हूं, है ना। लोग कहेंगे कि आप काबिल नहीं हो, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा। और ठोकर क्यों खानी जब खाने के लिए इतना कुछ है, ओट्स हैं, पराठे हैं, दलिया है। वेल लकी, काफी सारे लोग कहेंगे कि आप जब कामयाब हो गए हैं तो आप लकी हैं, लेकिन हैरान है लोग मेरी कामयाबी देखकर, किसी ने भी मेरे पैरों तले छाले नहीं देखे। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। यू वांट टू बी द लकी बॉय।

तो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो नाम जरूर बनेगा। और नाम एक दिन नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशनल वनडे सीरीज में इंडिया आई आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। मुकाबला जो है काफ़ी अहम होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया था। उप कप्तान गायकवाड़ ने शतक लगाया था, कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के खिलाफ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं, एवरीडे इज नॉट अ फिशरमैन डे। और सितारों से आगे जहां और भी हैं, और क्रिकेट के इम्तिहान और भी हैं, और निगाहों में मंजिल है, और ये मंजिल का ही तो फितूर है। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

दिखाई दो। वेल, अपनी नैया को तो पार आप खुद लगाएंगे। वैसे तो मैं ट्रेवल यॉट से करता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट की ये नैया आगे ले जाने के लिए नेहा आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर एक बार फिर से। और जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो इज साइनिंग आउट, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ 102.6 FM।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 8 बज चुके हैं और आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मेरे साथ। बताओ मेरा नाम क्या है। अगर आप मुझे सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आप मेरा नाम बता पाएंगे, लेकिन नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको नाम बताने के लिए। भाई मेरा नाम नेहा है और इस एक घंटे में हम बातें करेंगे कि दिल्ली NCR में क्या खास हो रहा है, कौन सी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनके बारे में हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, खोज खोज कर जानकारियां लाते हैं तो पहुंचाएंगे आप तक, और साथ ही एंटरटेनमेंट का पूरा अरेंजमेंट यहां पर किया गया है। अच्छा अभी मैं आ रही थी तो सोच रही थी कि भाई जब शो की ओपनिंग होगी तो आपके साथ क्या बात करूंगी, तो सडनली पता नहीं कहां से आउट ऑफ द ब्लू एक गाना जो पुराना है वो मेरे जहन में आया। अब गाने के माध्यम से बहुत पते की बात कही जा रही है। गाना कौन सा है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।

क्या बात है, चाहे तो इसके साथ गाना कंप्लीट कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ ये बात हम कह सकते हैं और कहनी भी चाहिए, हम एक बहुत ही महान देश में रहते हैं। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है इसमें कि हमें कल की बातों को छोड़ देना चाहिए पीछे। आज एक न्यू मॉर्निंग है, एक न्यू डे है और हमें आज एक नई कहानी लिखनी है। पूरा पन्ना हमारे सामने कोरा पड़ा हुआ है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ अस के हम किस तरह की कलम से और किस तरह की कहानी आज के इस पन्ने पर लिखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा गौर फरमाएं और आज के दिन को हमने क्या रुख देना है वो हम ही तय कर सकते हैं ना। भाई देखिए, हमारे ऊपर ही रहता है कि हमारा दिन आज का कैसा बीतेगा। हमने शुरुआत कर दी है आपके दिन को बेहतरीन बनाने की और आगे भी पूरा दिन ये काम चलता रहेगा कि सुबह से रात तक आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे मेरी जान।

अलीशा चिनॉय, कुमार सानू आपके लिए गा रहे थे फिल्म गुंडा राज से एक निगाह में। क्या गाना है यार, मजेदार। मैंने कहीं सुना तो सोचा अपने शो में इसको इंक्लूड करूंगी। मजेदार गाना है और अलीशा चिनॉय के गाने अक्सर मुझे बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली आपको याद है 90s के दौरान उनका एक पॉप गाना भी आया था, जो इंडी पॉप गाने हमारे हुआ करते थे, मेड इन इंडिया। वाओ, आई थिंक वो एक ऐसा गाना था, बचपन में एज अ किड मैं उसको बहुत गुनगुनाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, इस गाने में कह रहे थे कि हमारा चैन सुख कोई ले गया कोई। अब आपको क्या लगता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो कहीं ना कहीं हमारा सुख चैन भी ये मौसम ले गया है। मौसम की बात करने के लिए ही आई हूँ आपके पास। आज के मौसम की बात करें तो भाई गर्मी तो उतनी ही बनी रहेगी, और टेम्परेचर अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो जान लीजिए 38 डिग्री तक बना रहेगा आज का मैक्सिमम टेम्परेचर, ऐसा अनुमान है। बट कहने को 38 है, फील तो भैया अबव 40 ही हो रहा है, और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, ऐसा भी अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। कुछ ऐसा अनुमान भी है कि बारिश आ सकती है, बीच बीच में बदली छा जाती है। कुछ देर पहले बदली छाई हुई थी और अब मैं ज़रा विंडो के बाहर देख रही हूँ तो धूप आ गई है। तो भाई यही धूप छाओं के चलते हमारा जो दिन है वो बीत जाए, गर्मी से किसी तरीके से हम अपने आप को बचा लें, जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं उनका भी अगर हम ख्याल रख पाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। अपना तो हम रख ही लेते हैं कोशिश करके, लेकिन जो हमारे पंछी हैं, पशु हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हमें ज़रूर करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, सच में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस। और हम क्योंकि ह्यूमंस हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें। अब मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, वक्त बता रही हूँ आपको, सुबह के 8:10 और लीजिए 30 सेकंड हो चुके हैं, और अगला गाना मैं आपको सुनवा रही हूं। और इस गाने के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली शहर में कौन सी ऐसी गली है, कौन सा ऐसा रोड है जो आपको आज अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, बताऊंगी अगले गाने के उस पार।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वही वादे के अनुसार अब आपको बता दें कि दिल्ली के फैज रोड से ईदगाह गोल चक्कर होते हुए रानी झांसी फ्लाईओवर तक करीब 9 दिनों के लिए यातायात बाधित रहने वाला है, क्योंकि इस कॉरिडोर पर हैवी केबल बिछाने का काम शुरू किया गया है जो 18 जून तक जारी रहेगा और इस दौरान कई स्थानों पर सड़क खोदने का काम होगा और इसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है और इसका सुझाव देते हुए कहा है कि मध्य और नई दिल्ली से उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली जाने वाले वाहन चालक पूसा रोड, लिंक रोड, वंदे मातरम मार्ग होते हुए रिज रोड या रानी झांसी रोड से जा सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। चलिए एक बेहतरीन गीत आप सभी के लिए, जावेद अली और सोनू निगम दोनों की आवाजें मेरे ख्याल से इस गाने में आप सुनने वाले हैं। शुरुआत जावेद अली से हो रही है।

सुबह के 8:30 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा है आपके साथ। हरित क्रांति में सीआईएसएफ का योगदान। पिछले 6 वर्षों में देश भर में 44 लाख से अधिक पौधों का रोपण। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच बल द्वारा कुल 44,08,341 पौधों का रोपण किया गया, जो गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 35,70,000 पौधों के संचयी लक्ष्य से कहीं अधिक है। सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं उनसे आगे बढ़कर प्रदर्शन करने का उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाए रखा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान बल ने निरंतर निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधारोपण किया है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपलब्धि देश में हरित आवरण बढ़ाने

तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों में सीआईएसएफ की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। ये व्यापक वृक्षारोपण अभियान भारत सरकार के हरित आवरण बढ़ाने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के दृष्टिकोण के प्रति सीआईएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश भर की सीआईएसएफ इकाइयों ने वर्ष दर वर्ष वृक्षारोपण एवं वनीकरण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्यों से अधिक पौधारोपण किया गया। पौधारोपण का 90% जियो टैगिंग। इस अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि वृक्षारोपण स्थलों का सफल जियो टैगिंग एवं निगरानी तंत्र है। लगाए गए कुल पौधों में से 40,07,586 पौधों को क्रमांकित एवं दस्तावेजीकृत किया गया है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ साथ उनकी दीर्घकालिक निगरानी भी संभव हो सकी है। इसके अतिरिक्त 44,03,856 वृक्षारोपण अभिलेख सरकार के गवर्नमेंट लैंड इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जो पारदर्शिता एवं डिजिटल सुशासन के प्रति बल की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मियावाकी पद्धति शहरी वनों का निर्माण। घने शहरी वनों के विकास की दिशा में सीआईएसएफ ने देश के विभिन्न स्थानों पर मियावाकी पद्धति को अपनाया है। भिलाई, थकोलम, रांची तथा अमरावती पुदुर में कुल 10.5 एकड़ भूमि पर मियावाकी वन विकसित किए गए हैं, जहां 13,474 पौधों का रोपण किया गया है। ये उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं। प्रतिस्थापन एवं पुनर्स्थापन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। बल द्वारा सूख चुके अथवा मृत पौधों के व्यवस्थित प्रतिस्थापन का कार्य भी किया जा रहा है। प्रतिस्थापन हेतु चिन्हित 1,54,170 पौधों में से सीआईएसएफ द्वारा अब तक 1,48,668 पौधों का पुनः रोपण किया जा चुका है तथा केवल 5,502 पौधों का प्रतिस्थापन वर्ष 2026 के वृक्षारोपण सत्र के दौरान किया जाना शेष है। विश्व पर्यावरण दिवस पर योगदान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ इकाइयों द्वारा देश भर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाए गए, जहां 5 जून 2025 को 68,168 पौधे लगाए गए थे, वहीं 5 जून 2026 को अकेले 61,921 पौधों का रोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति बल की सतत प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित करता है। वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान हेतु सीआईएसएफ ने 4,00,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से अब तक 1,06,006 पौधों का रोपण किया जा चुका है। साथ ही पौधों की अधिकतम जीवित रहने की दर सुनिश्चित करने के लिए सतत सिंचाई व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इस उद्देश्य से 71 स्थानों पर ड्रिप सिंचाई सुविधाओं की स्थापना हेतु पहचान की गई है। वृक्षारोपण गतिविधियों के अतिरिक्त सीआईएसएफ द्वारा 216 नर्सरियों का विकास किया गया है तथा 193 वाटिकाओं को शहीदों के नाम समर्पित किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बल के वीर जवानों की स्मृति को भी सम्मानित किया जा रहा है। इन सतत प्रयासों के माध्यम से सीआईएसएफ ने न केवल देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण में भी सार्थक योगदान देते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का सफल निर्वहन कर रहा है।

नड्डा और साथियों, बहुत सी बातों के बीच गीत संगीत का पूरा इंतजाम हम आपके लिए करके रखते हैं। और आइए अब एक बेहतरीन गीत की ओर हम आप सभी को लिए चलें। रूप कुमार राठौड़ की मधुर आवाज में ये बहुत ही बेहतरीन गीत आप सभी के लिए, ये गाना बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको कभी इत्मीनान के साथ बैठकर सुनते हैं। तो

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: मंगल भवन मंगल हारी,
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

अरे ऐसे कैसे कोई आपका दिल ले गया, अपना दिल और दिमाग संभाल कर रखिए क्योंकि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम जो देना है। अगर आपने इस बार जून 2026 यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था तो आपको बता दें कि परीक्षा के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है जिसकी जानकारी आप ugcnet.nta.nic.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद अच्छे से तैयारी करके आप अपना नेट का एग्जाम क्लियर कीजिए और बन जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर JRF या फिर PhD, जो भी आपकी इच्छा है वो आप जरूर प्राप्त करें।

भाई लड़की तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दीवाना सा लड़का आ गया है अगला शो करने के लिए हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है गौतम। और यहाँ पर वो बिल्कुल टेक ओवर करने के लिए तैयार बैठे हैं, बेताब हैं। तो चलिए मैं ज्यादा इंतजार उनको नहीं करवाती हूँ और आप सभी से अनुमति लेती हूँ यहाँ से जाने की। हमारे घड़ी के अनुसार हो गए हैं 8:54 और लीजिए लीजिए 55 मिनट ही पूरे हो गए हैं, एग्जैक्टली इट्स 8:55 फाइनली बाय द रेनबो क्लॉक। और अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। और चलते चलते कुमार सानू की आवाज़ में एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ। तो चलिए हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और ऐसा लग रहा है, गौतम ने मुझे बताया कि बाहर मौसम अच्छा होने का आसार नजर आ रहा है, तो आप सभी इस अच्छे मौसम में अच्छे मूड के साथ एक अच्छा सा दिन बिताइए, अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिए, कई गुजारिश है मेरी आपसे। ऑल राइट, दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ, हैव एन अमेजिंग डे अहेड, नमस्कार मेरी जान।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। ऊपर वाले ने दिल के करीब लोग कुछ कम ही बनाए हैं, और जिनको ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आया। दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं मैं, लेजी नहीं, एनर्जेटिक करने के लिए। आरजी गौतम।

0: on, babe. Come on, babe.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
0: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा,
9: स्वस्थ रहने का फंडा।

0: ठोस खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

ये प्यार हर रोज आपसे हमें होता है एंड मौसम कमाल का है ना, और समोसा बिना आलू और वेस्टर्न म्यूजिक विदाउट शालू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ये स्टूडियो में मेरा साइन आउट करने का समय हो गया है। तो जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो आज जगह तुम्हें साइनिंग आउट। लव यू ऑल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रिजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच

बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: All right, again, having a glance at my pal hanging so manfully on the wall there. The studio clock, what is he saying? It's 26 minutes past 10 and 18 seconds. And what are we going to do? Very predictably, we're going to move into the next show. Sorry, the next track. And it's all about, like I said, the yesterday coming alive right here, right now. For your listening pleasure, lovely listeners, I hope you're enjoying the MMH, the Matchless Music Hour.

0: जी हाँ, फिल्म थी प्यासा और शो है दी एमएमएच द मैचलेस म्यूजिक ऑन व्हिच वी टेकिंग अ टीनी वीनी लिटिल मैसेजी काइंड ऑफ अ ब्रेक।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए।
2: बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
3: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी, और अब आकाशवाणी पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, और प्रोग्राम है जी हाँ बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हाँ, यह है बॉलीवुड रील, जिसमें हम बातें करते हैं ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई, और आज भी बातें होंगी बॉलीवुड की। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे पूछे जाएगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप हर रोज सुनते हैं। तो बने रहिएगा एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर ठीक 12 बजे तक।

0: दोस्तों फिल्म दिलवाले में टुकुर टुकुर बेशक शाहरुख खान काजोल को देखकर कर रहे थे, लेकिन जब आलिया भट्ट स्टारर यशराज फिल्म्स और स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर बुधवार को रिलीज किया गया, जो टीजर 1 मिनट 55 सेकंड का है और इसमें आलिया जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही है, इसको जैसे ही शाहरुख खान ने देखा तो टुकुर टुकुर देखकर शाहरुख खान से रहा नहीं गया और उन्होंने एक्स पर लिख ही दिया, बहुत बढ़िया आलिया, पहले तुम दिल तोड़ती थी अब हड्डियां तोड़ रही हो, तुम्हारा टैलेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीद है अल्फा लोगों का दिल जीतेगी और सिकिल के लिए कुछ विलेन भी बच जाएंगे, जाओ सबको दिखा दो सिग्मा गर्ल। बॉबी सर जब आप विलेन बनते हैं तो कमाल कर देते हैं, आपको एक बड़ी सी झप्पी, शिव और उनकी पूरी टीम को भी ढेरों शुभकामनाएं। अब इतना पढ़कर तो आलिया खुशी के मारे उछल रही हैं और झूम झूम कर रणवीर से कह रही हैं कि क्या कह रही हैं, अब जो वो कह रही होंगी वो तो रणवीर को पता होगा, हम क्या जाने, और वैसे भी दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच में वो बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, सही कहा ना, हाँ वो बनने की, छोड़िए उस बात को और आनंद लीजिए 2019 की फिल्म पति पत्नी और वो फिल्म के इस गीत का, आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।
1: मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से हाय हाय को

वैसे दोस्तों राजा दूल्हा फिल्म में जब गोविंदा और रवीना टंडन पर ये गीत इन अखियों से गोली मारे बड़े पर्दे पर दर्शकों ने देखा था तो दर्शक पागल से हो गए थे। जी हाँ, क्योंकि जहां एक तरफ गीत संगीत इसका जबरदस्त रहा तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा और रवीना के डांस स्टेप ने कहर बरपा दिया था। जी हाँ, कहर सही शब्द है, कहर बरपा दिया था। लेकिन ऐसी खबर तो अब जो है ना, असली कहर जो है हम ये कह सकते हैं कि अब बरपा रहा है काला हिरण फिल्म के लीड एक्टर सोनू मिश्रा पर। जी हाँ, कहर बरस चुका है उन पर और कहर टूटा है उन पर क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दिया और इसके बीच सोनू मिश्रा मीडिया में खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन फिल्म काला हिरण बनाने वाली प्रोडक्शन टीम का अपना अलग कहना है और वो कानूनी कार्रवाई करने की सोच भी रहे हैं। खैर, बॉलीवुड में तो ये सब चलता रहता है, इसीलिए बॉलीवुड की खबरों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि मनोरंजन में है ना टेंशन का कोई काम नहीं है। अभी तो आप बस तैयार हो जाइए उस सवाल के लिए जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। लेकिन पहले एक गीत सुनाऊंगा और उसके बाद आपके सामने पेश करूंगा सवाल। बहरहाल आनंद लीजिए इस गीत के मुखड़े का पहले आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। और जो गीत मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं वो बहुत प्यारा सा है। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कौन सा सवाल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। और दोस्तों अब तैयार हो जाइए उस सवाल के लिए जिसका सही और सबसे पहले जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, और जिसके सर पर सजे जाएगा ना ये वाला, कौन सा सरताज है भाई, बॉलीवुड सरताज का सहरा। जी हाँ, वो पूरे बैंड बाजे के साथ जुड़ेगा हमारे साथ। अब भाई सरताज जिसके ऊपर सस्ता है तो बैंड बाजे तो बजते हैं ना। तो तैयार हो जाइए सवाल सुनने के लिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक गीत का मुखड़ा और उसके बाद पूछूंगा उसी गीत से संबंधित एक सवाल। बस मुखड़ा सुनिए, गौर से सुनिएगा।

दोस्तों, ये गीत का मुखड़ा आपने सुना फिल्म बंदर से, जिसमें बॉबी देओल और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं। आपको बताना है इस गीत को किस पार्श्व गायक ने आवाज दी है। जी मजा आ रहा है सवाल सुनकर भी आपको मजा आ गया होगा। आपको बताना है, जी हाँ, कौन से हैं पार्श्व गायक जिन्होंने इस गीत में अपनी मधुर आवाज दी है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है सही जवाब। और हाँ, सही जवाब के साथ साथ सबसे पहले भेजने वाला या भेजने वाली बनेगा या बनेगी बॉलीवुड सरताज। पहचानिए ये आवाज और आनंद लेते रहिए इसी गीत का। आकाशवाणी FM रेनबो पर 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है सही जवाब। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं SR यानी संतोष राव।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर,
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों खुद्दार फिल्म का ये गीत आपने सुना, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। वैसे आई लव यू तो आप किसी भी भाषा में बोलिए, आपके हाव भाव से सामने वाली है ना समझ ही जाएगी कि आप अपनी मोहब्बत का कर रहे हैं उससे इजहार। लेकिन कई बार भाषा की वजह से गलतफहमियां भी हो जाती हैं। जैसे अभी हाल में ही एक तमिल फिल्म की जानी मानी एक्ट्रेस मालविका मोहनन के साथ इस तरह की घटना घटी, जब वो

सरदार दो फिल्म की शूटिंग कर रही थी और ये एक बड़ी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की शूटिंग में मालविका मोहनन के साथ साथ आशिका रंगनाथ भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हुआ क्या था वो हम आपको बता देते हैं कि एक सीन चल रहा था और उसमें डायरेक्टर और जो क्रू मेंबर थे उन्होंने मराठी में कुछ कहा और वो मालविका को लगा कि शायद वो गलत शब्द उनके लिए बोला जा रहा है और वो गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उनको बताया गया तब वो थोड़ा सा मुस्कुराई, शर्माई और फिर कहने लगी इट्स ओके। और जहां तक बात है इस फिल्म की तो या मालविका की, तो हम आपको बता दें कि मालविका ने 2013 की मलयालम फिल्म पट्टम पोल से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। एक बात और सबको बता दूं कि हिंदी में सरदार 2 से पहले मालविका नजर आई थी हिंदी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी जिससे इन्हें काफी अच्छी पहचान मिली थी। हिंदी मलयालम के अलावा इन्होंने पेट्टा और मास्टर जैसी बड़ी तमिल फिल्मों और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। वैसे जब जब इनको बड़े पर्दे पर देखो ना तो बिपाशा बासु की छोटी बहन नजर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसी लगती हैं। जबकि इनके पास इनका और बिपाशा का है ना आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खैर बिपाशा बासु की बात तो है, तो अब उनकी फिल्म में एक गुनाह फिल्म आई थी और एक बहुत सा प्यारा सा गीत है उसका, हम आपको सुनाते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सुनिए और आनंद लीजिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों वैसे तो जुड़वा 2 फिल्म में वरुण धवन गाते हैं कि मुझे परेशान कर रही हैं छोरियां, लेकिन मुझे तो छोरे परेशान कर रहे हैं जिया मैसेज करके। और आपको बताइए, कुछ ऐसे हमारे लिसनर्स हैं, बहुत प्यारे लिसनर्स हैं, जो दिल की बात खुलकर कहते हैं। जी हाँ, खुलकर कहते हैं। एक हमारे लिसनर्स हैं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो नाराज हो जाएंगे, कह रहे हैं कि आप हमारे मैसेज तो पढ़ते नहीं हो, मैसेज मंगा लेते हो। तो भैया एक बात बताओ, ये प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि जो सबसे पहले जवाब देगा उसको बनाया जाएगा बॉलीवुड सरताज। मतलब कहने का साफ साफ है कि जो शुरू के मैसेज आएंगे उन्हीं को पढ़ा जाएगा। अब आप क्या है, गूगल पे टाइप करके जवाब ढूंढ लेते हो, 20-25 मिनट के बाद आप जवाब भेजते हो, सोचते हो कि हम आपका नाम ले लें। तो ये थोड़ा सा उन साथियों के लिए नाइंसाफी होगी। जनाब आप समझ गए ना, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो हमारा प्रोग्राम शुरू से सुनते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। तो हम उन लोगों के नाम जरूर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। बहरहाल अब हम बात करते हैं कॉकटेल 2 के सेट से। जी हाँ, कॉकटेल 2 के सेट से एक खबर आ रही है कि शाहिद कपूर कुछ ऐसे ही गीत गा रहे हैं कि परेशान कर रही हैं मुझे छोरियां। कौन छोरियां हैं? ये हैं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना। क्या हुआ कि एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कृति सेनन सेट पर रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, और जब इसका मजाक शाहिद कपूर ने उड़ाया कि गोल गोल नहीं है ये तो दूसरे तरह की है, तो कृति सेनन ने पूरा आटा था शाहिद कपूर के ऊपर फेंक दिया, और देखते ही देखते पूरा सेट आटे के गुबार से भर गया। और फिर रश्मिका जो मंदाना हैं, उन्होंने भी शाहिद कपूर के साथ खेल ली होली, आटो भरी दिया आटा, और सारे जितने भी क्रू मेंबर सेट पर थे सब ने रंग लगा लिया, रंग नहीं लगा आटा लगा लिया। और बहुत अच्छी, अगर आप जाके गूगल पे आप टाइप करेंगे तो फोटो देखेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं कॉकटेल 2 का ये मस्ती भरा गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और उसके बाद हम जुड़ेंगे अपने बॉलीवुड सरताज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के बॉलीवुड सरताज फोन लाइन पर खयाला नई दिल्ली से उमेश कुमार। हेलो।
1: हाँ जी
0: उमेश जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर जी,
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर जी, आप सुनाइए सर।
0: मैं ठीक हूँ, क्या करते हो आप उमेश?
1: मैंने अभी बताया था सर, मैं ओरिएंटल
0: नहीं, आपने जी हाँ आपने ऑफ एयर बताया था ना, हमारे लिसनर्स भी तो जान लें आपके बारे में थोड़ा, है ना। अच्छा सही जवाब बता दीजिए आप।
1: सही जवाब है विशाल शर्मा।
0: विशाल मिश्रा जी। अच्छा एक बात बताइए, बॉर्डर टू में इनकी गीत आए थे, आपने सुने थे, कैसे लगे थे आपको?
1: सर मैंने सुनी नहीं वैसे गाने।
0: अच्छा नहीं सुन रहे
1: तो सर, वैसे तो पुरानी पिक्चरों का पुराने गानों का ही फैन हूँ, ज्यादा तक नए भी अच्छे लगते हैं, कोई कोई वो भी सुनता हूँ। और प्रोग्राम में सारे सुनता हूँ, एफएम गोल्ड के, एफएम रेनबो के सारे सुनता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, हमारे पास और भी कई मैसेज आए हुए हैं, कुछ लोगों के तो नाम मैं ले ही लेता हूँ। और ये सही जवाब हमें भेजा है मिश्रा ने, मालदा वेस्ट बंगाल से भेजा है। एक मैसेज हमारे पास आया है विनीत कुमार का, इन्होंने बदायूं उत्तर प्रदेश से, ये इन्होंने भी सही जवाब दिया है। एक मैसेज हमारे पास आया है नीतीश कुमार का झारखंड से, रेशम नगर भगैया झारखंड से, इन्होंने भी सही जवाब दिया। मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से, इन्होंने सही जवाब दिया है। एक मैसेज हमारे पास आया है सही जवाब के साथ, और ये है मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से। तो आप ये उन लिसनर्स को तो बहुत जानते होंगे उमेश जी?
1: हाँ जी हाँ जी, हमारे बहुत पुराने लिसनर्स हैं, कई इससे जुड़े रहते हैं, गोल्ड पे भी लिस्ट हुई
0: है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैसेज हमारे पास सही जवाब आया है पुणे से निकिता पारिकर का, इन्होंने सही जवाब दिया। नंद जयनंद है मोदी

0: लेकिन
1: दोनों बहुत अच्छे
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और बहुत लिसनिंग है, पूरा हिंदुस्तान सुनता है, बल्कि विश्व से भी लोग सुनते हैं और इस हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा। देखिए समय समय कहते हैं ना, परिवर्तन बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए, है ना।
1: तो परिवर्तन आजकल तो वैसे सर रेनबो पे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं।
0: जी ये बात बिल्कुल आपने सही किया, और बहुत अच्छे अच्छे आरजेज हैं हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो पे, एफएम गोल्ड पर भी हैं, और वो सारे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, और इसीलिए परिवर्तन होता है ताकि नयापन आ सके, है ना। अगर आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप मेरे ही प्रोग्राम बार बार सुनते रहोगे पूरे सुबह से शाम तक, तो आप एक दिन बोर हो जाओगे, है ना। तो आप भी चाहोगे कि नई आवाज आए, नए प्रोग्राम्स आए, नया अंदाज आए। इसीलिए क्या होता है, समय समय पर नए नए प्रोग्राम्स को लाना पड़ता है। जब नए प्रोग्राम्स आते हैं तो पुराने प्रोग्राम को एक साइड करना पड़ता है ना।
1: सर हम तो ऐसे करते हैं, जैसे हम आपका ये प्रोग्राम चल रहा है सरताज
0: जी,
1: अब एफ एम गोल्ड पे कोई प्रोग्राम आ गया वो सुन लिया, फिर उसके बाद एफ एम रेनबो पे कोई आया प्रोग्राम, ऐसे सुनते रहते हैं। बट
0: बिल्कुल यही तो प्यार है, प्यार मोहब्बत है जो बरकरार रहनी चाहिए ना उमेश। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। तो दोस्तों ये थे ख्याला उत्तर प्रदेश, ख्याला नई दिल्ली से उमेश, क्योंकि हमारे पास मैसेज उत्तर प्रदेश से बहुत आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने गलत जवाब दिया है। बहरहाल तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव अब लेता है आपसे विदा, क्योंकि शालू फिर से आ चुकी हैं स्टूडियो में लेकर। अब कौन सा प्रोग्राम है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगी। बहरहाल झांक रही हैं दरवाजे से, हमें इशारा कर रहा हूं कि वो यहां आ जाएं और हमें भी बता दें कि कौन सा प्रोग्राम करने वाली है। शालू जल्दी से बता दो कौन सा प्रोग्राम होगा 12:05 पर, जल्दी से बता दो क्योंकि समय हो गया 11:56।
2: संतोष जी हमारे सब लिसनर्स को पता है बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं प्लेट कूल का, तो वो शो लेके मैं आ रही हूँ। प्यारे श्रोता हमारे लिसनर्स बने रहिए और संतोष राव को आप एक थम्स अप दीजिए इस बेहतरीन शो के लिए।
0: तो चलिए इंतजार करिए शालू का 12:05 पर, और 1 बजे से मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। 1:05 पर शुरू होगा प्रोग्राम हमारा मेरा वाला सॉन्ग, जी हाँ आप वाला सॉन्ग, तो सुनिएगा जरूर। इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, नमस्कार। स्टूडियो में आते हुए ना शालू इसी तरह से डांस करती हैं जैसे कंगना रनौत करती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Play It Cool on 102.6 Akashwani Rainbow. The time at the studio clock, 16 minutes past 12 and 48 seconds. So what exactly are we doing? Well, we are talking about playing it cool, but then we're talking about things that are heating up. That's nothing cool about the fact that the world is now congregating, maybe in the US or in Canada or in Mexico or across their devices to keep track of what's happening on the fields there, the sporting fields there, because FIFA is definitely underway. What does FIFA mean to you? Is it all about just rooting for your favorite teams, learning some nice, interesting maneuvers from them, keeping track of all the heroes or the heroes in making? Because every time these special events happen, they throw to us new heroes with their own charm, with their own specialty, with their own trademark moves. Maybe you're wishing for some new hero to come across and completely wow you. All that could be happening, right? So on 9868107070, do write in and tell us. And we'll be sharing that on the airwaves. But for the moment, what I'll do is I'll take a little bit of a messagey break and be right back to Play It Cool. Entirely, completely, totally, for your listening pleasure.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Okay then, the message time continues, this time from you to us, because the messages are coming in and I had parked them for them to, you know, get together to be a nice meaty bunch so that I can read them out to you. And here goes. Hitin

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: All right now, not much to say because it's already 55 minutes past 12 and 24 seconds, so definitely

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए।

0: समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे

0: फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जी हाँ दोस्तों, गुरुवार से रविवार तक आप सुनते हैं 1 बजे से 2 बजे तक के प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला सॉन्ग मतलब जिसमें आप अपनी पसंद के गीत हमें भेजते हैं 9868107070 पर। 9868107070 पर आप हमें मैसेज करते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और अपनी फरमाइश भेज देते हैं और उन फरमाइशों को हम प्ले करते हैं विद द नाम। जी हाँ, आपके नाम के साथ। जैसे पहली पसंद हमने ली है किसकी, दिग्दर्शन और कविता गौड़ की मेरठ कैंट से, और इन्होंने कई गीतों की फरमाइश भेजी थी। फिलहाल फिल्म बेताब के इस प्यारे से गीत से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, दिग्दर्शन और कविता गौड़ की पसंद मेरा वाला सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी को याद कर रहे हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं गीतों के माध्यम से, तो आप हमें 9868107070 पर अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं। जैसे अब हम जो अगली फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं वो है कृष गुप्ता की, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और ये सोनू निगम की आवाज में गीत सुनना चाहते हैं, मुझे रात दिन।

जी हाँ दोस्तों, इन्हें सब कुछ पता है कि जिनसे ये मोहब्बत करते हैं वो भी इनसे बे इंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल, अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। बहरहाल, मेरा वाला प्रोग्राम में अब हर किरण सिंह फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, जो भेजा है इन्होंने। हम फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, ये कागज कलम दवा तिल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दे, इन्हें खत्म न होने दे। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं।
3: इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल।
2: जी हाँ, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है। किसने भेजी है? नंद किशोर, नंदू, रामू, परवीन, महाराजगंज, यूपी।

जी हाँ दोस्तों, सांवली सलोनी और खो गए हैं दिल किसका। जी हाँ, वर्षा खत्री का देहरादून से जो हमें संदेश लिखकर भेज रही हैं और गाना सुनना चाहती हैं आक्रमण फिल्म का ये मौसम माया है। वैसे आज मौसम है ना बड़ा हसीन है, बड़ा गजब का है। आज तो गीत सुनना चाहिए आज।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप अपनी फरमाइश हमें भेजते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और ये प्रोग्राम चलता है ठीक 2 बजे तक। और ये फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं, ये हमें भेजा है रंजीत ने मुकंदपुर दिल्ली से। फिल्म पापा कहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में क्या होता है, कौन सा जादू होता है, ये तो वही जानते हैं जो प्यार करते हैं, और जो प्यार नहीं करना जानते वो तो सिर्फ बहाना बनाते हैं, जी हाँ, या किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल जिस गीत का हम प्ले करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है निजाम अंसारी ने अमरावती महाराष्ट्र से, और ये सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का क्या मौसम आया है। वैसे आज का दिल्ली में भी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो हर जगह का मौसम बेहद सुहाना है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें हम आपकी पसंद के गीत प्ले करते हैं। 9868107070 पर आप हमें संदेश भेजते हैं, और जिस गीत की अब हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं वो गीत है फिल्म दिल का मुझे नींद ना आए, सत्येंद्र सिंह, ग्राम भिलोली, जिला कासगंज से।

दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, तो हम हैं आपके एसआर। जी हाँ, एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, और ये फरमाइश हमें भेजी है कृष्ण कुमार मिश्र ने दिल्ली से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और ये गीत विजय पद से आपके लिए आ रहा है। राह में उनसे मुलाकात हो गई कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, और ये गीत है कि फरमाइश हमें भेजिए सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से।

जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसान सोचता है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कई बार होता है ना कि हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं। वैसे हमारे लिसनर्स हैं जिनको हम खुश नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें नाराजगी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि कम से कम हमारा नाम ले लो, गीत नहीं बजा रहे हो, प्ले नहीं कर रहे हो तो आप हमारा नाम ले लो। बहरहाल होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम घोरवाल की पसंद का ये गीत है, और हम सभी उन लिसनर से यही कहना चाहेंगे जो नाराज हो गए हैं।

और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस गीत की फरमाइश सुनकर बहुत से जो लिसनर हमसे नाराज थे वो अब नाराज नहीं रहेंगे, बल्कि उनका मन भी डोला रे डोला करने लगेगा। जैसे रिंकू कुमार उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से।

दोस्तों मुनीश आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर आशियाना, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। बहरहाल ये आखिरी गीत का आनंद लेते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरा वाला सॉन्ग। इसी के साथ आपके दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो आशियाना प्रोग्राम शुरू हो रहा है अब, और जानते हैं ना हर बृहस्पतिवार दोपहर के जब 2 बजते हैं तो आशियाना आपके बीच आता है, लेकिन हर बृहस्पतिवार का खास होता है आशियाना, क्योंकि हम ये वाला जो सेगमेंट है ये डेडिकेट करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स को। तो आज इस आशियाना में मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक कहानी के साथ। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, और ये एक कहानी है राजू और बीर दादा की। बीर दादा जो अपाहिज हैं, और बीर दादा लगभग 70 साल के हैं, राजू

एक 13 साल का लड़का है, लेकिन बीर दादा को बहुत प्यार करता है। हमारे ही इसी समाज में रहता है और राजू और बीर दादा की दोस्ती पर आशियाना का ये शुरुआती अंश आपके लिए।

तो आशियाना सुन रहे हैं आप, और बृहस्पतिवार का आशियाना हम डेडिकेट करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन पर। यहां मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जहां पे वीर दादा हैं जो 70 वर्षीय हैं और राजू है जो 13 साल का लड़का है। वीर दादा के आगे पीछे कोई नहीं है और दिल्ली आते हैं वीर दादा कि शायद दिल्ली में कोई सहारा उन्हें मिल जाएगा। व्हीलचेयर पे बैठे हैं, अपाहिज हैं और सर पर छत नहीं है, तो इसलिए दिल्ली की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस गर्मी में फ्लाईओवर के नीचे ही उनकी गुजर बसर होती है। और वहां आके वो रुक गए, बस गए, और उसी फ्लाईओवर के नीचे 13 वर्षीय राजू उनको मिलता है। शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता इन दोनों का है, जहां राजू वीर दादा को देखकर वीर दादा से उठने के लिए कहता है। वीर दादा अपनी अपाहिज होने की बात उसको बताते हैं और कहते हैं कि वो अभी कभी उठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। राजू उनसे पूछता है कि फिर आप खाना कैसे खाओगे। वीर दादा कहते हैं कि मेरा एक हाथ थोड़ा थोड़ा चलता है, धीरे धीरे खा लूंगा। राजू वीर दादा से पूछता है कि अब आप नहाओगे कैसे, मुंह कैसे धोगे। तो वीर दादा उसे कहते हैं कि परमात्मा है, वो संभाल लेगा। दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे बैठे वीर दादा 70 वर्षीय भगवान के सहारे उस फ्लाईओवर के नीचे आ तो गए, उस व्हीलचेयर पे जिसकी खुशकिस्मती से दोनों टायर सही सलामत हैं। राजू वीर दादा को देख के भावुक होता है और फिर सोचता है कि जब तक मेरे हाथ पैर जल रहे हैं, मैं वीर दादा को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, उनके कपड़े बदल दिया करूंगा और उन्हें इस गर्मी में नहला भी दिया करूंगा। ये विचार लेके राजू वीर दादा के पास जाता है और उन्हें आश्वासन दिलाता है कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। वीर दादा ध्यान से जब राजू को देखते हैं तो देखते हैं कि राजू की एक आंख खराब है, जो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है। वीर दादा राजू से कहते हैं, मैं हूं तो वृद्ध, लेकिन इस अवस्था में भी जो भी सबसे अच्छा आशीर्वाद अगर मैं परमात्मा से मांगूंगा ना, वो तुम्हारे लिए। तुम एक आंख से देख नहीं सकते। राजू कहता है, बचपन से ही ऐसा है। वीर दादा परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली की इस भागती दौड़ती जिंदगी में फ्लाईओवर के नीचे बैठे वीर दादा को कोई ना कोई तो मिल गया जो उन्हें खाना खिलाएगा अपने हाथ से। राजू ट्रैफिक के सिग्नल में कुछ चीजें बेचता है, कुछ पैसे आते हैं, कोई भला मानस आके उसे खाना दे जाता है तो वो वीर दादा के लिए भी खाना मांगता है। एकाएक नीले रंग की एक गाड़ी रुकती है, राजू से उसकी आंखों के बारे में पूछती है। राजू कहता है, मेरी आंखों के बारे में आप चिंता ना करें,

मेरे बीर दादा के लिए कुछ खाना दे दें घर का। नीली गाड़ी से एक लेडी उसे खाना देती है और राजू भागे भागे बीर दादा के पास जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये सिलसिला पहले दिन शुरू होता है और अगले दिन भी चलता है। दिल्ली की इस गर्म तपती धरती पर राजू अपने बीर दादा के लिए कुछ ना कुछ जुटा ही लेता है। कभी ठंडी पानी की बोतल, कभी वो मैंगो ड्रिंक जो उसे मिल रहा था। वो जाता है सीधा बीर दादा के पास और हां, जब पासी की सिविल सप्लाई से पाइप में पानी आता है तो बाल्टी में भरकर बीर दादा को नहला भी देता है। ट्रैफिक सिग्नल से एक जोड़ी कपड़े भी मिल गए, यानी बीर दादा के लिए अब दूसरी पोशाक भी तैयार हो गई। भाव, इस नई पीढ़ी को कुछ लोग जो कोसते हैं, इस नई पीढ़ी में भी नारायण किस रूप में आ जाते हैं, किस जगह आ जाते हैं। दिल्ली की इस तपती धूप में नंगे पैर चलते हुए अपना रूप दिखाते हैं।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आशियाना सुन रहे हैं आप और आशियाना चलेगा 2:30 तक दोपहर में। अभी उसके बाद एक प्रायोजित कार्यक्रम आएगा आपके बीच में, एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और मैं इस खास अंश में बृहस्पतिवार का ये सेगमेंट हम डेडिकेट करते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स पर। तो आज मैंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा भाषण दिया जाए कि सीनियर सिटीजन्स के प्रति हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पता सबको होता है, फर्क यह है कि कोई करता है कोई नहीं करता। पता सबको होता है किसको इज्जत देनी है किसको कितना सम्मान देना है, पता सबको होता है। कोई करता है कोई नहीं करता है। सब लोग बहुत बिजी हैं, क्या करें, बहुत बिजी हैं। मुझे नहीं लगता कि एक नव निर्माण अगर भारत का हो रहा है तो वहां हम अपने सीनियर सिटीजन्स को पीछे छोड़ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस उनके पास है, जो दम खम उनके पास है, उनके विचारों में, वो शायद शरीर के बल से कहीं अधिक है। इसीलिए बीर दादा और राजू की ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। बीर दादा जो 70 वर्षीय हैं और दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे 24 घंटे बिताते हैं, वहीं रहते हैं, व्हीलचेयर पर बैठे हैं। और ये मेरी आंखों देखी कहानी है, ये फिक्शन नहीं है। राजू 13 साल का बच्चा जिसकी एक आंख खराब है, वो बीड़ा उठाता है कि बीर दादा को उनकी देखरेख करेगा, अपने हाथ से खिलाएगा, अपने हाथ से नहलाएगा। यहां हमने सीनियर सिटीजन्स को लुक आफ्टर करने के लिए किसी डिग्री की बात नहीं की, हम यहां बात कर रहे हैं इंसानियत की, जिसकी जरूरत है हर एक शख्स को जब तक वो जीवित है। तो पीछे इस कहानी में जो बातें हमने की, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राजू बीर दादा के लिए कपड़े जो हटाता है, खाना जो मिलता है वो खिलाता है, बीर दादा जो मांगते हैं वो देता है, लाकर देता है। और ये गीत मैंने चलाया था कि न जाने किस भेस में नारायण मिल जाएगा, नारायण किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। शायद उस बेसहारा अपाहिज 70 वर्षीय बीर दादा के लिए भी, जो ना अपने हाथ से खा पाते हैं ना पी पाते हैं, राजू की तरह न जाने कितने ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद एक मेडिकल हेल्प दे रहे हैं घरों में। हम उन्हें कभी कभी सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में देखते हैं, लेकिन सोचिए कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स, उनकी देखरेख करने वाले नारायण के ही रूप है ना।

बीर दादा बीमार थे और एक दिन वो परलोक से धार गए। बीर दादा की अंतिम संस्कार का बीड़ा राजू ने उठाया, 13 वर्षीय राजू ने। बीर दादा के नाम पर जो स्मृति है, वही जगह है, वही मिट्टी की जगह जहां पे बीर दादा की व्हीलचेयर रहा करती थी। 3 लोग उठा के बीर दादा को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। राजू बहुत भावुक होके कई दिनों तक रोते रहता है। उस फ्लाईओवर के नीचे राजू भी अपनी दिनचर्या बिताता था। ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ियां रुकती थी और राजू से कहती थी, स्कूल क्यों नहीं जाते, भीख क्यों मांगते हो। राजू मांगता नहीं था, देने वाला था। दिन गुजरते गए, बीर या दादा की याद जो थी वो भी मिटती गई। राजू सिर्फ अकेला उस बीर दादा को याद करता है और जब भी बीर दादा की याद आती है तो वो रो पड़ता है। आपके और हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो सिर्फ आपका समय मांगते हैं। शायद आपके दादा दादी जिन्होंने आपको अपनी गोद में बिठा के खिलाया, आज आपके पास 5 मिनट नहीं है उनके पास बैठने के लिए, उनका हाल पूछने के लिए इतना भी समय नहीं कि आप पूछ पाएं दादा कैसे हो। यह भी हो सकता है कि आप उस श्रेणी में हों जहां आप दिन रात अपने दादा दादी की, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आशियाना सुन रहे हैं आप, क्यों ना एक ऐसा आशियाना बनाए जहां खुशी से पहले किसी का दुख बांट लें, यही कोशिश कर रहे हैं हम आकाशवाणी रेनबो पर। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कुछ अलग हैं।

सफर चलता रहता है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 21 जून को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, आपकी चेतना को, आपकी सही सोच को जागृत करना भी योग है। योग लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि हमारा आजकल मोबाइल पे मिलता हुआ एयर टाइम, अनलिमिटेड अगर एक सकारात्मक सोच हो जाए तो सोचिए क्या होगा। और वैसी ही सोच को जागृत करता है कपालभाति प्राणायाम, एक बहुत ही स्ट्रांग योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है ये। कपालभाति क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है, लेकिन कपाल हमारा मस्तिष्क और भाति यानी चमकना। तो अगर योग में वो पावर है कि कपाल भाती करके आप की चेतना जाग जाए, आपके विचार अच्छे हो जाएं, तो योग से आप जुड़िए। क्योंकि कभी कभी एक नकारात्मक सोच हजारों सकारात्मक सोच को रोक कर रखती है।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं

0: मात्र आव भगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी,
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी,
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी,
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है,
0: जी,
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी,
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी,
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी,
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद

0: चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है।

0: उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा,
1: दीक्षा। और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा

0: ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
1: घर के पास लगा था मेला।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हां मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जब हमारा मस्तिष्क और नसें सही ढंग से काम करती हैं, तभी हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी मेज़बान शिल्पा गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे पूरे शरीर के संचालन से जुड़ा है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी तांत्रिका संबंधी विकार। आज हम जानेंगे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण, लक्षण, बचाव और आधुनिक उपचार के बारे में विस्तार से अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद शिल्पा जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहाँ आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं।
2: देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर जो उससे जो नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं वो नर्व्स होती हैं, वो सप्लाई करती हैं मसल्स को। तो ये स्ट्रक्चर मिलके नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होंगी, जैसे ब्रेन में अगर जो इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई,

0: और हाथ पैरों में लकवा हो जाता है। नर्व्स की जो बीमारी होती है, जो हम कॉमनली सुनते हैं कि न्यूरोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, तो जो नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और मसल्स की जो बीमारियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं मायोपैथी। जनरली उसमें होता है, न्यूरोपैथी में होता है कि हाथ पैर में आप में आपको झंझनाहट हो रही है, हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है, जो जनरली डिस्टली मतलब पंजे और हाथों से शुरू होगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। मसल में उल्टा होता है, मसल में होता है कि आपको बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है। कुछ होती है जो मसल और नर्व के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो बीमारी ऐसी होती है जैसे मायसिनिया ग्रेविस। तो आप कोई रिपीटेडली एक्टिव से आप जैसे एक बार तो खड़े हो गए बैठ के, लेकिन जब पाँचवीं बार खड़े होंगे तो आपको थोड़ा वीकनेस फील होगा। जब आप खाना खाएंगे, लगातार खाना खा रहे हैं, पहली रोटी खा ली, दूसरी तीसरी में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो रिपीटेड एक्टिविटी के बाद आपकी मसल वीक हो जाती है। ये होता है क्लासिकल मायसिनिया, जो कि नर्व मसल के जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है।
1: तो इसका मेन रीज़न क्या है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं किस वजह से हो जाती हैं, क्या कारण है?
0: इसको हम एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे हम ब्रेन से शुरू करें तो ब्रेन में जो कॉमन चीज़ होती है वो क्या होती है, लकवा हो सकता है, जो हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो पैरालिसिस दो टाइप का होता है, एक तो होता है कि ब्रेन का बहाव जो है वहाँ पे किसी को ब्लड वेसल जो रुक जाए, तो उससे उस एरिया में खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर जो राइट साइड का ब्रेन अफेक्टेड है तो सिम्टम जो है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हेमिप्लेजिया हो गया, तो हाथ या पैर उठना बंद हो जाएगा। अगर जो ब्रेन में हैमरेज हो गया है, तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में हैमरेज हुआ है। तो हम जो तीन चार चीज़ें होती हैं जिससे हम बोलते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं स्ट्रोक के, सबसे पहले तो अगर जो आपका हाथ अगर ऊपर उठ रहा है और नीचे उठाने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में अगर जो दिक्कत हो रही है, और बोलते हैं कि अगर जो आपकी चाल में अचानक लड़खड़ाहट होने लगी है, सिर में बहुत तेज भयंकर ऐसा हेडक हुआ है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, ये ऐसे सिम्टम आने लगे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको लकवा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी को राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट जबकि लेफ्ट साइड में होता है, तो उसके मन में दिमाग में आता है कि मेरे को ब्रेन हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, वो एकदम भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मैं आप जो कुछ सिम्टम बता रहा हूँ, किसी का एक हाथ चलना अचानक बंद हो गया, पैर चलना, या पूरा एक साइड का हाथ का लकवा हो गया, लोग पहले क्या सोचते हैं, ये सो गया होगा, तो मालिश करते रहते हैं या लोकल डॉक्टर से कई बार बात कर लेते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, वो प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा मानना है कि अगर जो ब्रेक कोई ब्लड वेसल बंद हो गया, इसमें क्लॉट आ गया है, और आप विद इन 3 आवर्स अगर जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो हम एक ड्रग दी होती है जिसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर, वो दवा लगाने से वो क्लॉट को डिजॉल्व करने से 100% रिकवरी हो सकती है। तो ये एक बार एक एम्स की स्टडी में हमने देखा था कि क्यों लोग लेट पहुंचते हैं, जब हम बोल रहे हैं 3 घंटे में आइए, तो सबसे पहला तो कारण था कि मरीज ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि लकवा है। हार्ट अटैक को तो एकदम आइडेंटिफाई करे जबकि गलत डायरेक्शन में, लेकिन ब्रेन अटैक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो सोचा किसी कारण से होगा। दूसरा कारण था कि जो सबसे पहले जिस कॉन्टैक्ट लोकल फिजिशियन या जिससे बात करी, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, वो उस अब तो खैर बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पुरानी स्टडी है, तो वो सेकंड फैक्टर था। तीसरा मेजर फैक्टर था ट्रांसपोर्ट, वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, तो जो प्रीशियस टाइम हमारा 3 घंटे का था वो वेस्ट हो गया। तो आई वुड से कि आप सबसे पहले जो रीजनेबली अच्छा हॉस्पिटल है आपके वहाँ जाइए, और डॉक्टर बताइए कि हमको लकवा हो गया। फ़ोन से बता सकते हैं तो पहले ही बता दीजिए, जिससे वो डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई करने के लिए तैयार रहेंगे, और सीटी स्कैन में जैसे ही या हमारे भी पता चलेगा कि आपको ये क्लॉट वाला लकवा है।

0: हॉस्पिटल पहुंचे।
1: नहीं, ये सवाल आपका ऐसा है कि जो लोग क्या फर्स्ट एड कर लें,
0: exactly.
1: लेकिन क्या है कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है या क्लॉट बन गया, ये हमको पता नहीं होता। अगर जो हम वो दवा दे दें जो क्लॉट में काम करती है तो हेमरेज बढ़ा सकती है, तो ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन MRI करते हैं, जिससे एकदम पता चल जाता है कि ब्रेन में हेमरेज हो गया या क्लॉट हो गया है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसका इलाज आगे ले जाएंगे। तो एक तो बात करी हमने स्ट्रोक की। दूसरा होता है एपिलेप्सी, कि मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी भी ब्रेन से आती है
0: जी।
1: तो मिर्गी लोग समझते हैं कि सिर्फ बेहोश होकर गिरना ही मिर्गी है, ऐसा नहीं है। मिर्गी बहुत तरह की होती है। एक होती है जो क्लासिकली हम जानते हैं कि चारों हाथ पर अकड़ने लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आने लगता है, गर्दन एक तरफ टेढ़ी होती है और झटके मारता है, जो करीब 30 सेकंड से 2 मिनट तक होता है, फिर धीरे धीरे आदमी बेहोश हो जाता है, लंबी लंबी सांस लेता है, तो हम समझ जाते हैं इनको मिर्गी के दौरे पड़े। कभी कभी आदमी बेहोश नहीं होता है, सिर्फ हाथ में झटका आ रहा है लगातार, वो भी मिर्गी हो सकती है। कभी हो सकता है एक हाथ या एक पैर में सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, वो भी मिर्गी हो सकती है। कई बार अचानक चेंज इन बिहेवियर, जिसको हम साइकिक सीजर बोलते हैं, वो भी मिर्गी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, इवन मिर्गी तो एज सिंपल एज ऐसी हो सकती है कि, हालांकि लोग बड़े कन्फ्यूज रहेंगे कि अगर आपके पेट में ऐसा लग रहा है कि अचानक घबराहट सी हो रही है पेट में, या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आदमी फिर बेहोश जैसा हो रहा है, क्योंकि पेट में अच्छा नहीं लग रहा है तो हर आदमी को होता है
0: जी।
1: लेकिन उसके बाद आदमी बेहोश नहीं हो जाता या कंफ्यूज नहीं हो जाता, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन, जो हम कॉमनली जानते हैं, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है या वायरल इंसेफेलाइटिस हो जाता है। अब तीसरी जो नई चीज़ पिछले 10 साल में हम ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे हैं, वो ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। वो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कोई भी बॉडी में अगर जो केमिकल या सब्सटेंस जाएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब होता है हमारे ब्रेन के कॉमन सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती हैं जो नहीं बननी चाहिए, और वो उस ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं, जो कि शरीर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और जो ब्रेन में होगी तो उसको हम ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की बीमारी हो सकती है। ट्यूमर एक और बात है, जैसे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, ऐसे ब्रेन में भी कहीं कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। वो ब्रेन की झिल्ली की वजह से हो सकता है, ब्रेन के मटेरियल की वजह से हो सकता है। तो कुछ ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं इतने खतरनाक नहीं है, जैसे मेनिन्जियोमा होता है, वो जनरली स्लोली बढ़ते हैं, कुछ परसेंट वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हम ग्लायोमा के नाम से जानते हैं, वो जो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं उस इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो ग्लायोमा ट्यूमर होता है उसमें ग्रेड होता है, जब ग्रेड 1 होता है तो हम मान के चलते हैं कि आदमी की 10 साल सर्वाइवल तो अच्छा होगा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होते हैं तो मानते हैं 5 से 8 साल या 10 साल की सर्वाइवल अच्छा होगा। एक होता है जो ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 4 ऐसा है कि एक तो वो दिखने में ऐसा होता है कि एक जगह नहीं होता, वो जैसे पानी बह जाता है उस तरह से ब्रेन के कैंसर वाले सेल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो बहुत रैपिडली बढ़ता है। और कई बार हमने देखा कि जब तक हम उसके पहले सिम्टम से, उसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो कई बार एक दो दौरे पड़ते हैं लोग इलाज कराने नहीं जाते, इसलिए बोलते हैं कभी भी दौरा पड़े तो ब्रेन का एक सीटी स्कैन MRI जरूर होना चाहिए, उससे एकदम पता चल जाएगा। तो प्रीशियस टाइम 2 महीने निकाल दिए उन्होंने कि दूसरा दौरा नहीं पड़ा। दूसरा होता है परसिस्टेंट सिर में हेडेक रह रहा है। तीसरा डिपेंड करता है वो कहाँ से शुरू होता है, चेंज इन बिहेवियर, पहले पिछले हफ्ते ठीक थे आप, अब आपका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कभी भी अचानक याददाश्त आपकी कमजोर होने लगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, जाके मेरे को ऐसा लग रहा है तो आप देखिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो एक ये ट्यूमर हो गया। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कॉमन होता है रोड साइड एक्सीडेंट से, और हम जानते हैं कि जो लोग 2-व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, और भगवान कि ऐसी स्थिति हो जाए कि आप गिर जाएं और आपका सिर किसी चीज़ से टकरा जाए, तो ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, ब्रेन की हड्डी टूट सकती है, वो हड्डी टूट के ब्रेन के अंदर घुस सकती है, तो कई बार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उससे होता है। उसमें भी ये है कि अगर जो आप समय पर पहुंच जाएं तो अगर जो ऑपरेशन सही टाइम पे हो तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा उसी वक्त डैमेज इतना ज़्यादा होता है, वो एक सेकंड में आप मतलब 60 की स्पीड से दीवार से टकरा जाएं, तो सोचिए आपका सिर कितनी बुरी तरह से टकराएगा, कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो सबसे पहले तो श्रोताओं को जानना चाहिए कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि मैं तो 10 साल से नहीं पहना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं हो सकता है, सबको पहनना चाहिए। और जब तक आप, और उसका दूसरा बात है जो मैंने देखा है कि हमारे

0: पुलिस ऑफिसर्स वीडियो बनाते हैं, हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसको हुक नहीं लगाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर कभी भी हम बाइक या कुछ भी ऐसे राइड करें तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज पर। बातें हम और भी करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। हमारे पास एक मैसेज है, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। आई फॉरगॉट मैनी थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स विच वर टोल्ड अ मिनट एगो। आई फॉरगेट मैनी थिंग्स लाइक स्विचिंग ऑफ व्हीकल आफ्टर पार्किंग, टर्निंग ऑफ गैस स्टोव एक्सेट्रा। इज इट सीरियस? वॉट कैन बी डन?
1: ये जो
0: सागर
1: 26 साल के सागर साहब ने जो सवाल पूछा है, ये जनता का सवाल है ये, तो क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी मल्टीटास्किंग कर रहा है। आदमी मोटरसाइकिल पे भी चला रहा है तो मोबाइल भी कान में लगा हुआ है और दूसरे काम भी कर रहा है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी एक, जैसे मैं उसको इस तरह समझाता हूँ, हमारी रैम होती है, क्या 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, उसकी एक कैपेसिटी आप कितना काम कर सकते हो। लेकिन हम उसके ऊपर 20 ऐप खोल के बैठ गए। जब हम 20 ऐप खोल के बैठ जाएंगे तो रैम स्लो हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जब हम मल्टीटास्क, एक तरफ तो आप सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में,
0: काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ
1: काम
0: और रहे हैं,
1: कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने टारगेट दे रखा है वो भी चल रहा है, घर में वाइफ ने एजेंडा दे रखा
0: है, और उसके बाद क्या करना है,
1: उसके बाद क्या करना है। तो जब आप मल्टीपल चीजें सोच रहे हो तो उसके बीच में कोई आपको ये बता के चला गया कि ये फोन नंबर पर बात कर लेना, तो आप 2 मिनट बाद सोचेंगे ये कौन सा फोन नंबर था। तो ये हमारी मेमोरी की दिक्कत नहीं है, ये हमारे वर्किंग स्टाइल की दिक्कत है। तो इनको, सागर साहब को भी ये कहूँगा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात है थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेशन करें। जब भी करेंगे जो गाड़ी का, गाड़ी ऑफ करना भूल गए, क्योंकि आप जब उतरे तो आपको सोचते हुए उतर गए तो ध्यान नहीं रहेगा गाड़ी की ऑफ करनी थी। तो अटेंशन उस टाइम कितना आपका है उसकी वजह से। उसके लिए मैं कुछ हद तक आज के एनवायरनमेंट को भी मैं ब्लेम करता हूँ। वो भी मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में और भी कहीं कहा था कि

0: आज से पहले हम टीवी देखते थे, आधा घंटे का प्रोग्राम देखते थे, सीरियल देखते थे, पौन घंटे का देखते थे। आज क्या देखते हैं, 15 सेकंड की रील। कोई प्रोग्राम अगर जो 2 मिनट का अगर जो हो तो हम देखते नहीं, उसको फॉरवर्ड करते। तो हमारा अटेंशन स्पान इतना छोटा होता जा रहा है। जो चाहिए हमको फास्ट चाहिए, अभी चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। कोई बात भी कर रहा है तो लंबी बात करने वाला कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो जब आप सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट करे जा रहे हैं तो वो आपके माइंड में घुस ही नहीं पा रही है वो बात। यही बात हो रहा है कि वो रजिस्टर नहीं हो रही है। आपके हियरिंग ठीक है, आपने बात सुनी भी, आपको याद है, लेकिन क्या सुनी वो, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुई वो। तो वो जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो मेमोरी में नहीं जाएगी वो, तो आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई सीरियस बात नहीं है, बड़ी आम कंप्लेन है। तो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, मन को शांत रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें, जिससे कि वो आप चीज़ें भूल ना जाए और आपके ध्यान में ध्यान रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, माय फादर हैज़

0: इन चीज़ों पे थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें, जिससे कि वो आप चीज़ें भूल ना जाएं और आपके जहन में ध्यान रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, माय फादर हैज़ आई
0: इस्केमिक स्ट्रोक।
1: इस्केमिक स्ट्रोक ऑन 23rd Jan 2026।
0: जी
1: नाउ ही हैज़ लिटिल बिट फ्रोजन लेफ्ट शोल्डर,
0: जी
1: स्लो वॉकिंग इशूज़।
0: नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए कि कहीं एक्सरसाइज आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात श्रोताओं को बताऊं, क्योंकि इन साहब ने जो सवाल पूछा है उससे रिलेटेड ही है कुछ कुछ। कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन में झटका मारने की, ऐसे हाथ से पकड़ गर्दन एक तरफ मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं या रोटेट करते हैं। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है, स्पेशली जब बाल कटवाने जाते हैं तो जो बार्बर लोग होते हैं वो सिर के मालिश के साथ साथ गर्दन में झटका लगा देते हैं, वो अच्छा लगता है जिसको लगा रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है कि हमारे गर्दन में दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी दो नसें होती हैं, चार नसें होती हैं, उनमें से एक नस कभी कभी फट जाती है उसकी वजह से। और कभी कभी इमीडिएट लगवा नहीं होता है, वो फट जाती है, उसमें जब थ्रोम्बोस बनता है अगले 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में फिर जाके लगवा होता है। तो ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए और ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एक और बात, मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ बच्चे जो है कान में मोबाइल लगा, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नस फट गई। ऐसी स्थिति में चार पांच चीज़ें को सिम्टम जो होते हैं, पहला होता है कि आपको एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हाथ या पैर कम चलने लगे अचानक। दूसरा होता है कि आपकी आवाज़ या तो बंद हो जाए या लड़खड़ा जाए या आपको लगे आवाज़ ठीक नहीं है। तीसरा होता है कि जब आप चलते हैं तो आपका चलने का बैलेंस खराब होने लगे अचानक। तो आपको सोचना चाहिए क्या ये लकवा है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको डाउट होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात करी कि विद इन 3 आवर्स आप पहुंच जाएंगे तो चांसेस है कि उसको ठीक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
1: कई बार होते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, हम सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो रहा होगा, हम इतना ध्यान नहीं देते।
0: यही एक प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि पहले बताया प्रोग्राम में कि राइट साइड में चेस्ट पेन होगा तो हम सोचते हैं हार्ट अटैक
1: लेकिन
0: है।
1: कई बार लेफ्ट में भी होता है या वैसे भी होता है, हम सोचते हैं अच्छा गैस का हो रहा होगा
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: हम उसमें पानी लेने लगेंगे, कुछ लेने लगेंगे, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हार्ट

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं हम जब भी सुनते हैं मन को सुकून सा महसूस
2: देता है, लेकिन रात के टाइम पे ये ज्यादा तकलीफ देता है। रात को मान लो थोड़ी देर सो गए, फिर उठे, फिर नींद आएगी क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है। ये बड़ी ऐसी अजीब सी बीमारी है जिसका कोई टेस्ट नहीं है, जिसको हम करके बता दें कि ये RLS है। या आपके डॉक्टर, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको देखेगा तो एक मिनट में आपके सिम्टम्स सुन के समझ जाएगा। उसकी पहचान ये है कि अगर जो आप पैर दबाएं, कोई आपके पैर दबा दे तो आपको अच्छा लगने लग गया। जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप कहेंगे हमारे घर में नानी दादी मामी, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले पैर दबाते हैं तभी उनको नींद आती है। ये वही RLS है उनको भी, और ये फैमिली में रन करता है तो समझ में आ जाता है कि आपके परिवार में किसी को बीमारी थी तो वो आपको भी है। दूसरी बात, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे उस दिन ऐसा होगा, तो हो सके तो सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में, मतलब शॉवर चला के गर्म पानी से वो कर लें, या फुट मसाजर जो आते हैं मार्केट में 10 मिनट वो कर लें, या जो क्या बोलते हैं बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें पैर को मोड़कर हम बैठते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं जो आसन क्या होता है उसको मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो पॉस्चर है उसमें अगर जो बैठेंगे आप तो उससे जो काफ मसल्स हैं वो प्रेस हो जाएंगी, उससे भी एकदम आराम मिलता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें करने से, और आपके डॉक्टर को एक बार दिखाएं तो उसके लिए कुछ जांच भी करते हैं कि आपका कई बार आयरन लेवल कम हो तब भी ऐसा होता है। जब आपने बोला B12 तो ठीक है, लेकिन आयरन की भी जांच करा लें। और डॉक्टर साहब से बोलिए क्या RLS बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि क्या ये वो बीमारी तो नहीं है? अगर जो ऐसी बीमारी है तो उसकी एक छोटी सी दवा देते हैं जो खाने के एक घंटे पहले लेने से आपको इसमें तकलीफ में आराम मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी अपने टेस्ट की बात करी, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में पहले ही पता लगा सकें?
2: देखिए, ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ लिया है जैसे कि रामबाण दवा जैसा, कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो जाए जिससे हम सारी बीमारी पता चले, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जैसे ब्रेन का है तो CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, EEG करते हैं, जिससे कॉमनली सारी बीमारियों के, और बहुत सारे एडवांस पेट स्कैन आ गया है। पेट स्कैन में अलग अलग एफडोपा है, अलग अलग टाइप के स्कैन आ गए हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आसान तरीका तो जनरली MRI करके उससे पता चल जाता है। जब हम न्यूरोपैथी की बात करें तो इनका टुकड़ा लेके भी हम जांच करते हैं। तो ये तो हैं हमारे कॉमन टेस्ट। बीच में अपने बात करी थी एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी के लिए MRI करते हैं। आजकल इतनी सारी एंटीबॉडी आ गई, वो हम चेक करके देखते हैं तो उससे भी पता चलता है।
1: एपिलेप्सी से लेकर कई बार लोगों के उसमें मिथ भी हैं कि अगर किसी को ये अटैक हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो जुराब सुंगा दो या चम्मच डाल दो कुछ ऐसा, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए?
2: आई थिंक ये सवाल तो हमको पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए था पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एपिलेप्सी पहले बात तो ये समझना चाहिए कि एकदम जानलेवा नहीं होती है आपको, लेकिन भयानक जरूर दिखती है। तो जिसको पहली बार होती है उसके परिवार वाले भी डर जाते हैं, देखने वाले भी डरते हैं। तो जब किसी को भी अगर जो एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है तो 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको देखिए उसका सांस बराबर आ रहा है तो कपड़े ढीले कर दें। दूसरा, उसको 90° करवट दिला दें, दोनों हाथ पर पकड़ के एक तरफ करवट दिला दें, और 2 से 5 मिनट में वो दौरा अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्ट ये वॉच करना है कि ही इज़ ब्रीदिंग वेल। तीसरी बात बड़ी कॉमन जो आपने बोला कि लोग क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक जब तक आप जूता डलाते हो या मोजा उतारते हो तब तक वो दौरा ठीक ही हो जाता है। तो लोग समझते हैं कि मोजा सुंघाने से ठीक हो गया, लेकिन जो आपने बात बताई

0: कि मुंह में चम्मच डालना या उंगली डालना ये बड़ा खतरनाक है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में जब दौरा शुरू होता है तो दांत भिंचते हैं, उसके बीच में जीभ आ जाती है और वो जीभ कट जाती है। तो लोगों को लग रहा है उस जीभ को बचाने के लिए वो चम्मच डाल देते हैं। होता क्या, वो जबड़ा इतना ज़ोर से टूटता है कि जीभ तो बचे ना बचे उनके दांत जरूर टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपनी उंगली डाल देते हैं, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उंगली लिटरली उनकी कट जाती है क्योंकि जबड़े का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो किसी की जीभ कटनी है तो वो, और जब तक आप कोई भी उपाय करते हैं तब तक वो कट चुकी होती है, और वो जो आप देखते हैं आपको देखने में डर लगता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 2 मिनट करवट दिला के देखिए कि सांस आ रहा है और गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दें तो मुंह में जो भी लार बनी है या सलाइवा आ रहा है वो निकल जाएगा, वो लंग में नहीं जाएगा, और देखिए कि 2 से 5 मिनट में होश आ जाएगा। एक बात, अगर जो 2 से 5 मिनट में होश नहीं आता तो ज़रूर हॉस्पिटल जाइए। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को दौरा पड़ा, बेहोशा, दोबारा दौरा पड़ना शुरू हो गया, तो ये ऐसी स्थिति है कि जब आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जरूर जाना चाहिए। तीसरी बात, उसके हाथ पैरों को मोड़ने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, दौरे में एक आदमी का हाथ मुड़ रहा है, मैंने ऐसा देखा है, 2 दोस्त जा रहे थे, एक को दौरा पड़ा, उसका हाथ मुड़ा, उसने सोचा हाथ मुड़ गया, उसको पूरा घुमा के दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया, उसका पूरा शोल्डर तोड़ दिया उसका। तो उसको मिर्गी से इतना नुकसान नहीं हुआ जिसके उसके दोस्त की मदद करने से नुकसान हो गया। तो प्लीज़ उसके शरीर को छोड़ दीजिए, चोट ना लगे, आसपास ऐसी चीज़ें हो जिससे चोट लगती है उसका बचाव कर लीजिए और अपने आप मरीज को होश में आ जाएगा, फिर अस्पताल ले जाइए।
1: डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, हम डायबिटीज़ की भी बात कर रहे थे, तो जो बीपी या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं?
0: देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसा है, ऐसी बीमारियाँ हैं, पहली बात तो एक बार किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो मान के चलिए आपको ज़िंदगी भर ये बीमारी रहेगी। वो इतनी बीमारी कितनी सीवियर होगी वो उम्र के साथ में दवाओं के ट्रीटमेंट के हिसाब से। कुछ लोग सोचते हैं कि बीपी की दवा खाई तो मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, आपकी बीपी की दवा की मात्रा बढ़ घट सकती है। जनरली समर्स में पसीना ज़्यादा आता है तो बीपी अच्छा कंट्रोल होता है तो लोग दवा बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवा की मात्रा कम कर लें और विंटर आए तो अपनी दवा की मात्रा दोबारा बढ़ा लें। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो उससे ब्रेन पर असर पड़ता है। ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई है तो स्ट्रोक हो सकता है, जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों उनको स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है तो मिर्गे के द्वारा भी हो सकते हैं, न्यूरोपैथी हो सकता है डायबिटीज़ वगैरह जो नहीं अच्छी तरह का कंट्रोल है, डायबिटीज़ में अगर जो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये भी, तो बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन आपके अनकंट्रोल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, और जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर जो समय से मैं आपको बताऊं, अगर जो 100 मरीज जो अस्पताल में आते हैं जो लकवा लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से 50 मरीज वो होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दवा खाना बंद कर दिया है ये सोच के कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है।
1: लेकिन कई बार होता है ना कि डॉक्टर हमें 2 दिन की दवाई दे रहे हैं, 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ठीक सा महसूस हो रहा है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं, तो वो सही है या गलत है और कितना गलत है?
0: 2 बातें, एक तो होता है कि 2-3 दिन में खाने के बाद अच्छा लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि आपको दवा सूट कर रही है, आपके लिए दवा इफेक्टिव है, तो दवा बंद ना करें। दूसरी होती है, मैं 3 दवा खा रहा था, अभी मैं सब कुछ ठीक, तो ऐसा करता हूँ 2 कर देता हूँ, ये भी गलत तरीका है। स्पेशली जो पार्किंसन के मरीज होते हैं जिनको हम लिवोडोपा नाम की दवा देते हैं, तो उनको, अगर मेरे श्रोता जो पार्किंसन के हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते
1: जी
0: हैं।
1: आप, हमें मालूम है कि आपकी पार्किंसन में एक्सपर्टाइज है, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए,
0: इसीलिए मैं पार्किंसन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर जो डॉक्टर ने आपको 3 दवा लिखी है तो, और जिस समय से लिखी है उसी समय पर आप 3 दवा खाएं, क्या होता है 3 दवा खाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको लग रहा है 3 क्यों खाऊं, अब मैं 2 खाऊंगा। तो उसका एग्जांपल ये है कि अगर जो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको मान लो 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भराना है तो आप 5 लीटर भरा के काम नहीं चला सकते। और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 गोली की है तो ये लिवोडोपा तो गाड़ी का पेट्रोल है पार्किंसन के लिए, तो आपको उतनी ही दवा खानी पड़ेगी और समय से खानी पड़ेगी, तभी आपका पार्किंसन अच्छा कंट्रोल रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नमस्कार, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है।
1: अच्छा जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए।
2: मैडम जी, मैं राम, मेरा नाम राम मिलन है
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मैडम जी, दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जो अभी आप लोग चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे दौरा और मिर्गी के बारे में
1: जी,
2: तो इसके उपचार और इलाज के बारे में मैडम जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भांजे को ऐसा होता है ना।
1: अच्छा ठीक है, बताइए
2: इसके विषय, हाँ थोड़ा सा चर्चा करिए और बताइए आप लोग जो हो सके तो।

0: वैसे डॉक्टर साहब काफी बता चुके हैं,
1: राम मिलन जी ये हमने सारी बात अभी बहुत विस्तार में बताई है, फिर भी एक लाइन में ही बता देता हूँ कि जब भी मिर्गी के दौरे होते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि असली में मिर्गी के दौरे हैं या नकली मिर्गी के दौरे हैं।
2: सर मैं लाइन से अलग होकर एफएम में सुनता हूँ, यहाँ वॉइस आप लोगों की कम आ रही
1: है। ठीक है, सुनिए आप, तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिर्गी के दौरे असली हैं या नकली है, वो डॉक्टर आपकी जांच करके बता देगा। दूसरा, मिर्गी के दौरे जब भी होते हैं उसमें ज़्यादातर 60% मरीजों को एक दवा देने से मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग दवा बंद कर देते हैं। इस दोबारा दौरा पड़ने का सबसे कॉमन कारण है कि आप दवा बंद कर देते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे। जब भी एक मिर्गी का दौरा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि 6 महीने से 3 साल कम से कम दवा देते हैं। किसको 6 महीने देना है, किसको 3 साल देना है, ये आपका डॉक्टर आपके बीमारी के प्रोफाइल के हिसाब से देख के बताएंगे आपको।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम नसों की के ऊपर बात करें तो नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है ये?
1: जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो जैसे हमारे घर में बिजली की वायरिंग है उस तरह से पूरे शरीर में वायरिंग है जिसको हम नसें बोलते हैं या नर्व्स बोलते हैं, और इनका काम जो है ब्रेन के सिग्नल को मसल तक, स्किन तक, सब्जी के सारे ऑर्गन तक पहुँचाना है। तो इसकी कोई भी बीमारी है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। अगर आप पूछें कि क्या कॉमन कारण है, तो डायबिटीज सबसे कॉमन कारण है। अगर जो 100 मरीज देखूंगा जिनको न्यूरोपैथी है तो उसमें से शायद 50-60-70% लोगों को डायबिटीज़ होगा। ये वो लोग होंगे जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होगा, जिनकी डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल नहीं रही होगी। कभी कभी जिन लोगों को कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी देते हैं उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। एक होती है बीमारी, जब आपने न्यूरोपैथी की बात की, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, हाथ में दर्द होता है। कब होता है, ज़्यादातर रात में या शाम को या काम करने के बाद, जो गृहणियाँ जो खाना बनाती हैं या जहाँ पे हाथ में रिपीटेडली फ्लेक्शन मतलब मूवमेंट हो रहा है उसके बाद वो दर्द होता है। किसी भी को भी हाथ में दर्द होता है उनको डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए कि क्या मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो नर्व कंडक्शन करके उसकी जाँच करके हम कन्फर्म कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इंजेक्शन लगाकर या दवा दे के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लंबे टाइम तक लेने के बाद, जैसे टीबी की कुछ दवाइयों से होता है और लीवर में अगर जो एप्सिस होता है उसकी दवा लेने से होता है, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो सकता है। अनकॉमन होता है जैसे वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है नसों के अंदर, उससे भी होता है। एक जो बड़ी अचानक होने वाली बीमारी होती है जो बोलते हैं एक्यूट डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आदमी बिल्कुल ठीक था, आज सुबह उठा तो उसको लगा पैरों में थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, उठने में दिक्कत है, शाम तक वो दिक्कत बढ़ गई, कल तक इतनी हो गई कि अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। आप सोचिए 24-48 घंटे में आदमी बेड बाउंड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, जो कि डीमाइलेटिंग डिसऑर्डर है, जो पब्लिक जो हो सकता समझ पाए इस बात को कि उसको बोलते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो गया, GBS हो गया, GBS हो गया, बड़ा कॉमन वर्ड है ये। तो उस बीमारी में आपको समय से अस्पताल जाना चाहिए और समय पे इलाज शुरू करने से उस बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी मरीज देर से आते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। किसी भी मरीज को इस बीमारी में अगर जो पहले हफ्ते के अंदर अंदर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आ गई है तो इसका मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा थी, उसकी रिकवरी स्लो होगी और कभी महीनों जाके टाइम लगेगा जब वो रिकवरी होगी।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इलाज की बात करी तो क्या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट है इस फील्ड में?
1: हाँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पार्किंसन, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ है उस पार्किंसन में। एडवांसमेंट क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो दवाइयाँ बहुत नई नई आ गई हैं, तो दवाओं की तो एक बात करेंगे। जब पार्किंसन बहुत एडवांस हो जाता है तो दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन उसी दवा का साइड इफेक्ट होने लगता है। तो कैच-22 सिचुएशन ये है कि हमको दवा बढ़ानी है लेकिन दवा बढ़ाने से साइड इफेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम ब्रेन का सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं, ऐसे ब्रेन के अंदर पेसमेकर डाल देते हैं और बाहर से उसको प्रोग्रामर से उसको एडजस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे पैरामीटर सेट करके हम उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम DBS सर्जरी करते हैं तो उसकी दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है। जब दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है तो दवा से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं और भी एडवांसमेंट जो बोले कि अब ये अपने आपने सुना होगा, एक अल्ट्रासाउंड से भी ब्रेन के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। वो हर मरीज के लिए नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डॉक्टर देख के डिसाइड करके बता सकता है कि इस मरीज को ऐसा सर्जरी करने का फ़ायदा हो सकता है। उन्हीं मरीज में हम DBS

0: भी कर सकते हैं। एक तो ये एडवांसमेंट है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन में आजकल जैसे अलग अलग टाइप के पेट स्कैन आ गए हैं, जैसे पार्किंसन में डोपामिन लेवल कितना है ब्रेन का वो हम जांच कर सकते हैं। दूसरा अब जो नया आने वाला है जो भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है वो है ब्रेन के अंदर एमाइलॉयड कितना है वो देख सकते हैं। जैसे डिमेंशिया की आज हमने इतनी बात नहीं करी है लेकिन डिमेंशिया भी एक ऐसा बीमारी है, तो डिमेंशिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम डिमेंशिया एज ए ग्रुप बोलते हैं कि आदमी को मेमोरी उसकी कम होती जा रही है। तो कॉमन जो डिजेनरेटिव होता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता जाता है वो होता है जिसमें एमाइलॉयड डिपॉजिट होने लगता है, तो एमाइलॉयड पैट करते हैं जिससे पता चल जाता है। उसके लिए आपने बहुत सुना होगा कि आजकल ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं, तो ब्लड सैंपल में पर्टिकुलर टाइप का एमाइलॉयड का प्रोटीन का कितना रेशियो है वो देख के भी वो जज कर सकते हैं। और दवा की बात करें तो उसके लिए कुछ नई अभी बहुत एडवांस दवाइयाँ आई हैं जो कि अल्जाइमर्स के लिए ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम दें तो उनसे ऐसा मानते हैं कि उन मरीजों को फ़ायदा हो सकता है।
1: दवाइयों के अलावा अगर हम फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उसका क्या रोल रहता है?
0: देखिए रिहैबिलिटेशन जो है ना वो ऐसा है कि अगर तो जब हम चाय बनाते हैं तो एक तो चाय आप छोड़ दीजिए उबल जाएगी, आपने देखा हो चाय वाला उसको बीच बीच में हिलाता भी रहता है तो वो चाय का टेस्ट बदल रहा है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जिनको वीकनेस आई है, चाहे वो लकवे के साथ हो, यो न्यूरोपैथी की वजह से हो, मायोपैथी की वजह से हो, तो अगर जो आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो उसी बीमारी की रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आज हम इतने डिस्कस नहीं पा रहे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन जनरल आर प्रोग्रेसिव, और जब वो प्रोग्रेसिव है तो आपको इतनी अच्छी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी मसल की पावर बनी रहे और बीमारी से आप आगे निकल जाएँ। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़, उसमें भी मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं तो उसमें भी वो प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर जो आप खूब एक्सरसाइज करके अपनी मसल की पावर को मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ ये रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम लकवा होने के बाद अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। एक और भी जो बात आज हमारे शायद समय की व्यवस्था के कारण नहीं हो पाई कि मन की स्थिति, मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ खुश रहो। अब मरीज बोलते खुश रहो क्या बीमारी है, मतलब खुश रहने का क्या मतलब है,
1: कैसे खुश रहे?
0: कैसे खुश रहेगा? तो ये जो खुश रहो वाला जो तरीका है वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। जैसे आपने मेरी चॉइस के गाने लगाए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा मेरे गाने सुन के,
1: आप हमारे शो में आए हमें भी खुशी हुई।
0: जी ऐसे कोई होते हैं जो स्पिरिचुअल, उनको भगवान के भजन में बड़ा मजा आता है, वो उसमें खुशी ढूंढते हैं। प्लेयर्स जो होते हैं उनको खेल के बड़ा मजा आता है। जिन लोगों को दौड़ने की आदत पड़ जाती है वो जब तक 5-10 किलोमीटर दौड़ के नहीं आए उनकी उनको खुशी नहीं मिलती है। तो हर आदमी की खुशी अलग है, वो हर आदमी अपनी खुशी अलग जगह ढूंढता है।
1: लेकिन अगर कोई मरीज़ है किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो उसके साथ अपना जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसे फॉलो करे, अपने डेली रूटीन कैसे जिए, क्योंकि वो कई बार उस चीज़ में चला जाता है कि हाँ इस बीमारी हो रही है।
0: ये तो बहुत कॉमन बात है, उसके लिए मैं मरीजों को एक बात बताता हूँ कि भगवान न करे किसी की टांग टूट जाए तो अब दो तरीके हैं, या तो अपनी टांग को देख देख कर रोज परेशान हो जो कि कई बार लोग करते हैं, दूसरा है उसमें बढ़िया सा कलर वाला प्लास्टर लगाओ, दोस्तों को बुलाओ उस पर ऑटोग्राफ लो, पता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग रखना और पॉजिटिव रखना, उन्हीं को मैं बोलता हूँ कि खुश रहिए तो आप अच्छे रहेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब आज आपने काफ़ी हमें जानकारी दी कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में, तो जाते जाते आप क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देंगे? लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया है, मैं मैसेज ज़रूर लूँगी शॉर्ट में, बेशक उनको हम मैसेज दे दें। वो लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब आजकल मिडल एज में ही लकवे की प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या रीज़न है, पर्यावरण या खान पान? कृपया बताएं। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से, शॉर्ट में आप बता दीजिए।
0: नरदेव सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है, क्योंकि ये आपकी नहीं हमारी भी बड़ी समस्या है। 30 साल का यंग लड़का, 22 साल का यंग लड़का, उसके 2-3 कारण है। एक तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में होने लगा है, डायबिटीज यंग एज में होने लगा है, खान पान इतना खराब है, स्कूल में

0: लक्षणों को समय रहते पहचानना और उचित उपचार लेना कितना आवश्यक है। सही जानकारी, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इन समस्याओं से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद शिल्पा जी।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health.aardelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

भारत, एक महान देश हमारा। हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी

0: आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से, जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया।
0: जी।

0: 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ
1: जी
0: था।
1: जी
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
1: जी
0: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे
1: जी
0: तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खासतौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते।
1: जी
0: परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है।
1: ओके
0: तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग
1: जी
0: गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन
0: जी
1: कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे
1: राइट देन, तो आप अभी CTC में
0: में।
1: हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो
1: जी
0: उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, He's second in

0: कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ए मेरे वतन के लोगों।
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है।
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने। और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी,
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ

0: एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं जो
1: जी
0: इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पर रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेनियर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड ज़िले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियाँ थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य,
1: सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लंबिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के
1: जी
0: लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी, वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक

0: करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुँचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुँचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडें पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया आप, और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफ्स थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई, और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट

0: गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल,
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीजी में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: और मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएसबी, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है, हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतड़ा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
1: जी
0: अलग
1: जी
0: अलग जगह
1: जी
0: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
0: जी
1: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आ गया है,
0: जी
1: मॉडर्न पढ़ाई हो रही हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी
0: वो
1: जी
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
1: जी
0: हो जाए।
1: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: बिल्कुल
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
1: वाह,
0: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है। जी
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ,
0: बिल्कुल
1: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सैल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है। ललित शाह जी तो एक जनाब हैं, दिल्ली से ही द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं, देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली DDO का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको DIG लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ DDO वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों।
1: धन्यवाद है यश का।

0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें ये मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल,
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है। अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट
1: जी,
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू एसएसबी के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें GNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका एक प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी,
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSB सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वरांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाए।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कम्प्लीटली। लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल
0: सी टी सी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफ़ी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं।
0: Right then, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूं जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है,
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ, आप हैं तो हम हैं, 90

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस के खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक

बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी पर हाजिर हो चुकी हूँ मैं सीमा, आपका खास प्रोग्राम लेके सिटी लाइट्स और सिटी की खबरों के साथ। और बहुत सारी बातें बता मेरे पास, सिटी में क्या क्या खास चल रहा है, इसके अलावा किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स की डेट्स बहुत करीब आ गई हैं, ये सब जानकारी दूंगी मैं आपको हमारे खास कार्यक्रम सिटी लाइट्स में। और सिटी लाइट्स आपका अपना सिटी की खबरों के साथ और बहुत सारे खूबसूरत गीतों के साथ एक बार फिर से आगाज करते हैं कार्यक्रम का सीमा के साथ।

जी हाँ, तू मिले या सब मिले या, और कोई तो जिंदगी में जरूर ऐसा होता है ना, बस वो होता है ना, तो फिर यकीन जानिए किसी बात की टेंशन नहीं होती है, बस लगता है कि ये है ना बस सब कुछ संभाल लेगा। तो बस ऐसा ही कुछ हमारा जो आकाशवाणी का एफएम रेनबो है, कुछ ऐसा ही है, आपकी हर परिस्थिति में, आपके हर मूड में, हर वक्त आपके साथ रहता है और इसी तरह से ढेर सारी खबरों के साथ आपको समय समय पर जानकारी देता है कि क्या कुछ खास चल रहा है और क्या अभी तक आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था। नहीं पता था तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बच्चों को चिड़ियाघर देखने का बड़ा मन करता है ना, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पहले से टिकट बुक नहीं करा पाते हैं, अचानक हम कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, सडनली हमें लगता है कि अरे चलो बीच में चिड़ियाघर आया है, बच्चों को दिखा लाते, घुमा लाते और टिकट तो बुक नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी पूरा पूरा इलाज है। चिड़ियाघर में रविवार से सेल्फ टिकटिंग कियोस्क सिस्टम शुरू हो गया है। अगर किसी ने पहले से ऑनलाइन टिकट अगर बुक नहीं कराई है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मौके पर ही मोबाइल इंटरनेट से आप वहाँ पर कियोस्क से टिकट खरीद सकते हैं। और इसके लिए पता है आपको, टिकट बुक करने के लिए आपको मुफ्त में वाईफाई भी मिलेगा। और आपको ये बता देते हैं यहाँ पे कि इसके ज़रिए क्या होगा कि समर वेकेशन कैंप के दौरान तैयार की गई यहाँ पे प्रदर्शनियों का, पेंटिंग्स का भी यहाँ पे दौरा किया जा सकता है स्कूली स्टूडेंट्स के द्वारा। और इसके अलावा सेल्फ टिकटिंग कियोस्क से यहाँ आने वाले लोगों को UPI पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कराने में आसानी मिलेगी और उन्हें मौके पर ही टिकट बुक करने के लिए मुफ्त वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि कई बार होता है ना, हम बहुत सारे बच्चों के साथ स्कूल ट्रिप हमारी जाती है और वहाँ पर हम करते हैं ना टिकटिंग का, अगर हो सकता है कि कुछ ही पहले से बुकिंग नहीं हुई है, तो ये सब बहुत आसान हो गया है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब चिड़ियाघर में टिकट लेने के लिए कियोस्क, जी हाँ, सिस्टम शुरू हो गया है। और हमारा सिस्टम तो ऑन रहता है हमेशा और एक से बढ़कर एक गीतों के साथ।

बिल्कुल भी जमाना नहीं लगेगा। और आखिर हमारे मैंने तो सोचा ही नहीं ऐसे भूलना भुलाना, वैसी गंदी बातें तो मैं करती नहीं हूँ। जो एक बार लाइफ में आ जाता है ना, उसकी अपनी जगह बन जाती है, परमानेंट जगह बन जाती है, और वो जगह फिर कोई नहीं ले सकता। और भुलाने की कोई भी बात नहीं है, अगर भुलाना है तो भुलाना है हमें अपने दुखों को, तकलीफ़ों को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इन सब चीज़ों को भुला देना है। और इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए ना मेरे पास एक बहुत बहुत सॉलिड एक रामबाण तरीका है। पता है क्या, रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि सारी जितनी भी बीमारियां हैं, टेंशन हैं, सबको भुला देंगे आप। मतलब कि किस तरह से करना है ये तो मैं बताऊंगी ही अभी, लेकिन एक जो चीज़ होती है जो आपके पास हमेशा होती है वो क्या होती है? जी हाँ, आपकी सांसें। जो आपके पास हमेशा होती है उसका जो कंट्रोल होता है ना, वो आप ही के हाथों में होता है। तो उनको ठीक तरीके से हम लें, छोड़ें, और उस तरह से हम लें और छोड़ें कि हमारी जो बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कहीं छूम अंतर हो जाए। तो आज बात करते हैं हम अनुलोम विलोम की। जी हाँ, यानी कि एक नाक बंद करके, नाक का एक साइड आप बंद करिएगा और सांस को अंदर खींचिएगा। अंदर खींचते हुए राइट साइड बंद करते हुए और फिर ओपन करते हुए दूसरे साइड से उसको निकालना है, यानी कि दूसरी साइड से सांस को बाहर निकालना है। एक साइड से आपको सांस अंदर खींचना है और दूसरी साइड से आपको सांस को बाहर निकालना है। लग रहा है ना कितना सिंपल है, पर ये है तो बहुत सिंपल, पर इसका कमाल मैं अगर आपको बताऊं, इसका कमाल ये है कि दिमाग इससे बिल्कुल शांत हो जाता है। जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब बाय बाय हो जाता है। इसके अलावा फेफड़े हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑक्सीजन बेटर मिलता है हमें और इम्यूनिटी बेटर होती है, बीपी कंट्रोल होता है। और सच में बीपी वालों के लिए तो ये नेचुरल थेरेपी है। और मुझे तो लगता है कि बीपी जो है ना आजकल ऐसी समस्या हो गई है जो मालूम ही नहीं है। अगर आप चेक कराने जाओ तो पता चलता है, अरे मुझे बीपी है। तो इसीलिए ये उनके लिए तो सच में ही नेचुरल थेरेपी है। उनको तो बिल्कुल मस्ट है करना, उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। और इससे बच्चों का फोकस भी बनता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बच्चों को भी इसके बारे में हमें सिखाना है, उनको भी अनुलोम कराने का तरीका बताना है। और अगर हम योगा की बात करते हैं, योग सिर्फ आसान नहीं है। योग का मतलब होता है जोड़, सिर्फ अपने शरीर को नहीं, मन को भी, अपनी सांसों को जोड़ना। जी हाँ, इसी तरीके से ना अगर आप जोड़ के रखेंगे अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को, फिर देखिए कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी बीमारी आ सकती है ना, कोई तोड़ नहीं सकता आपके शरीर को। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और हर रोज़ क्या करना है, जी हाँ, कम से कम 10 मिनट अपने ऊपर लगाइए। 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम तो ज़रूर करना है। तो आज से वादा कर लो कि आप अपना मोबाइल बाद में उठाओगे उससे पहले मैं 10 मिनट अनुलोम विलोम करूँगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी लाइफ होती है ना। और आपको मालूम ही है कि 21 जून को हम जो इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस वर्ष का आपको मालूम है कि क्या थीम है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और स्वस्थ वृद्धावस्था ही नहीं, हर एज ग्रुप के लिए ये योग बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज हम मैं बता रही हूँ आपको कि इस बार का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, विषय के साथ मनाया जाने वाला है, जो कि और ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है और योग के महत्व पर बल देता है। तो योग का महत्व तो बहुत आपको पता चल गया है। योग स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए एक बहुत ही मूल्यवान अभ्यास हो सकता है और उनकी जो शरीर की कई क्षमताओं को ये बढ़ा देता है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोमल यानी कि धीरे धीरे खिंचाव, श्वास, व्यायाम और ध्यान के संयोजन से योग संतुलन और लचीलापन, शक्ति, गतिशीलता, ये सब अपने अंदर लेकर आनी है। और इससे क्या होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप जो जितना भी स्ट्रेस होता है उसको भी सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये हुई ना खास बात। तो चलिए अब एक खास गाना भी आपके लिए हम चला देते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका अपना सिटी लाइट्स।

प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका अपना सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि क्या कुछ खास होने वाला है। अभी हमने योग की बात करी है ना, और अगर आपका मन कहता है कि योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स आप करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सच में बहुत पॉपुलर हो गया है और योग के प्रति हम सभी लोग बहुत ही सचेत और सजग हो चुके हैं, तो इसीलिए योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही एक अच्छा सा अवसर है। जी हाँ, आयुष कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत संचालित योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। संस्थान के अनुसार अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ये कोर्स रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से संचालित होता है। तो आपके पास अगर अभी भी वक्त है, 15 तारीख अब तक है आपके पास है, 15 जून तक आप योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। तो बस देर किस बात की है, अभी प्रोग्राम सुनना है आपको, प्रोग्राम सुनने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, अपना अप्लाई कर देना है फॉर्म पे, है ना। तो और ये सच में एक अपने आप में योग वेलनेस ट्रेनर अगर आप बन जाएंगे, क्या बात है, मैं तो अभी सोच के ही डर रही हूँ। कितने फिट हो जाओगे आप, टेंशन फ्री, हर तरीके से फ्री फ्री फ्री, और साथ ही साथ लोगों को भी बीमारियों से, टेंशन से दूर करने का एक मौका आपके पास होगा, है ना।

और आपको बता देते हैं कि जल्दी से कटरा हरिद्वार के लिए विशेष ट्रेन भी अब चलने लगी है। खास तौर पे हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए अगले हफ्ते कटरा और हरिद्वार के बीच एक विशेष ट्रेन चलेगी। और विशेष ट्रेन के बारे में आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है 14 जून को शाम 6:15 पर जम्मू कश्मीर के कटरा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:30 उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचेगी। और ट्रेन नंबर वगैरह आपको सब जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा ये वापसी में अगर हम बात करें हरिद्वार से 15 जून को शाम 5:20 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 7:00 कटरा पहुंचेगी। इसमें कुल 16 कोच होंगे जिसमें स्लीपर, जनरल, AC 3 टीयर और AC 2 टीयर कोच भी शामिल किए जा सकते हैं। और ट्रेन रास्ते में जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट और सहारनपुर और रुड़की में रुकेगी। तो हुई ना खास बात, कटरा हरिद्वार के लिए अगर आपने प्लान किया हुआ है और परेशानी में थे, अरे क्या होगा, कैसे जाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं?

और ट्रेन के बाद आ जाते हैं अब हम बस पर। जी हाँ, ट्रेन के बारे में तो आपको जानकारी देती हूँ, अब बसेस के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारी DTC बसेस होती हैं, खासतौर पे फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो पिंक टिकट लेकर जाती हैं, टिकट बिना पैसे दिए उसमें हम पिंक टिकट देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ज़रूरी हो गया है, और अब थोड़े ही दिनों में पता है पिंक टिकट बंद होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना है, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये इसके लिए आपको एक ज़रूरी चीज़ पता है क्या होगी, कि इसके लिए आपको आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दिल्ली की बसों में मुफ्त सफ़र के लिए बहुत जल्द अब पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड अनिवार्य होने जाना है। दिल्ली सरकार ने ये पिंक सहेली स्मार्ट सहेली कार्ड को लेने के लिए दिल्ली के पते का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में उन हज़ारों छात्राओं का थोड़ा सा नाम मुश्किल होने वाली है जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड उनके पास नहीं होगा ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जितनी दिल्ली की लड़कियाँ हैं उनको सहूलियत होगी इस बात की कि अगर उनके पास आधार कार्ड है और उन्होंने अपना

अपना कार्ड बना लिया है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, तो इसके उससे क्या होगा कि उन्हें फटाफट से कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, फटाफट बस में चढ़ना है और अपनी जगह पर पहुंच जाना है। और इसके लिए सहूलियत भी दी गई है, अब आधार सत्यापन के लिए लोगों को आधार कार्ड की कोई फोटोकॉपी या कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। EDAI ने इसके लिए एक नया ऐप तैयार कर लिया है। इस ऐप में QR कोड स्कैन करते ही आधार आपका जो वेरीफाई हो जाएगा, और ये बहुत ही आसान तरीका होगा, आपको अपना आधार के ज़रिए वेरीफाई करवाना है और अपना कार्ड बनवाना है। और इस ऐप के में जो आप जैसे ही वेरीफाई करने वाली संस्था इस ऐप में QR कोड खोलेगी, आधार कार्ड आधार धारक उस QR कोड को स्कैन करेगा, स्कैन होते ही उसकी ज़रूरी जानकारी नाम उम्र मोबाइल नंबर ये सब उसमें डिस्प्ले में आ जाएगा, उसके बाद उसकी फ़ोटो भी उसके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी और इसके बाद उसका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी इससे, हमारा कहता ना कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी और धोखाधड़ी से भी हम बचेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी हो ही रही हैं। इसलिए आपको भी अगर चाहिए जल्दी से जल्दी अपना जो है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए। चलिए पावर सिटी लाइट सुनते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्रृंखला।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम सिटी लाइट्स। और चलिए अब बात कर लेते हैं फिर से थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि पढ़ाई की अगर बात होती है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो जॉब में होते हैं या कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, रेगुलर कोर्सेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना रिलायबल है, सबसे ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आता है इग्नो। जी हाँ, और इग्नो ने अभी एक नया कोर्स जो है वो शुरू करा है। इग्नो ने जलवायु परिवर्तन में PG कोर्स की शुरुआत कर दी है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। इग्नू ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए MSc क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये है MSc, ये MA में कोर्स नहीं होगा, ये MSc का कोर्स होगा। और इग्नू भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय इसी के साथ बन गया है, जिसने कि क्लाइमेट चेंज जैसे विषय में PG की शुरुआत कर दी गई है। और ये विज्ञान के अंडर, ये विज्ञान पाठ्यक्रम में अंदर ये शुरुआत की गई है। और ये जो कोर्स होगा ये 2 साल का होगा। इस पाठ्यक्रम में किसी भी विषय से स्नातक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। ये भी खास बात है इसकी कि ये होगा साइंस के अंडर, लेकिन किसी भी स्ट्रीम के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विषय से यहाँ पे स्नातक होंगे वो भाग ले सकते हैं। ये कोर्स 80 क्रेडिट्स का होगा। पहले जो साल की पढ़ाई है सफलतापूर्वक अगर आप कर लेते हैं तो विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लाइमेट चेंज प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। और इस

इसकी जो फीस है 8,000 रुपये है, और इसके अलावा इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। और अगर एडमिशन से जुड़ी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ignoadmission.samarth.edu.in पे आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, ignoadmission.samarth.edu.in पर आप जाके जलवायु परिवर्तन वाले कोर्स के बारे में जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और भी जानकारी हम देते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, जी हाँ, सिटी लाइट्स में। और सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं आपकी अपनी सीमा के साथ।

और मुझे भी आपका ख्याल आ गया आपका ख्याल आ गया कि ये बता देती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा रहती है, अक्सर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन कई बार हमें मालूम नहीं होता उस रोड पे कुछ काम चल रहा है ना। अगर हमें पहले से ही पता हो कि उस रोड पे कुछ काम चल रहा है तो हम अवॉइड करेंगे वहाँ पे जाना, है ना। और अगर बाई चांस हम फंस जाते हैं तो फंस ही जाते हैं फिर तो आपको बता देते हैं कि फैज़ रोड से ईदगाह गोल चक्कर होते हुए रानी झांसी फ्लाईओवर तक 9 दिन तक यातायात बाधित रहने वाला है। और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए जो डाइवर्जेंस हैं वो बता दिए हैं, वैकल्पिक ऑप्शनल जो रास्ते हैं वो बताने अपनाने की सलाह दी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैवी केबल बिछाने का जो काम है शुरू किया गया है और ये काम करीब 18 जून तक चलने वाला है। जी हाँ, आज क्या तारीख है, 11 तारीख है, 18 तारीख तक यहाँ काम चलने वाला है। और इस दौरान कई सारी जगहों पर सड़क खोदने का काम किया जाएगा और इसी के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, ऐसे में कॉरिडोर पर यातायात प्रभावित रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपको सुझाव भी दिया जा रहा है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि आप इस रोड को अवॉइड करें। और क्या कर सकते हैं, पश्चिमी दिल्ली जाने वाले वाहन चालक पूसा रोड, लिंक रोड, वंदे मातरम मार्ग होते हुए रिज रोड या रानी झांसी रोड जा सकते हैं। तो अगर हमें भी कोई बता देना कि अगर आप घर जा रहे हो और घर जाने में जो रास्ते आपको पड़ने वाले हैं, वहाँ पे कई बार होता है ना सड़क बन रही है या फिर कहीं खुदाई हो रही है या रास्ता वन वे हो चुका है, तो बहुत ईजी हो जाता है ना, आपको मालूम होता है कि आपने उस तरफ से नहीं जाना है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए इन रास्तों को ना अपनाएं और जो आपको आपको डाइवर्जेंस बताई गई हैं उसको लीजिए। इसीलिए तो हमारा खास कार्यक्रम होता है सिटी लाइट्स, सिटी की खबरों के साथ, खास खबरों के साथ आपके साथ बनी हुई हूँ मैं सीमा।

और बिल्कुल तड़पना तो बनता है जब हम जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल बेताबी बेचैनी होना तो बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मुलाकात करूंगी। लेकिन जाते जाते आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। जी हाँ, बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है, थोड़ा सा बादल रहेंगे, बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ, थोड़ी सी जो गर्मी है ना, धूप की जो तपन है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई होगी, और थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा है कि आंधी के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आएंगे ना तो बारिश लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक हम लेते हैं सिटी लाइट से इजाज़त और गीता के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम। जी हाँ, बने रहिएगा मैसेज मसाला मिक्स में, और सीमा को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करूंगी बहुत जल्द। तब तक ठीक है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:05। मैं हूं गीता, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था ना लास्ट प्रोग्राम में कि आज आपसे मुलाकात होगी, तो मैं हाजिर हो गई हूँ आपसे बतियाने, कुछ खुशनुमा पल आपके साथ बिताने, ढेर सारे बेहतरीन गीत सुनने और कुछ दिलचस्प बातें आपके साथ साझा करने के लिए। वैसे दोस्तों, जब भी मैं इस प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में आती हूँ ना, तो मन में यही ख्याल आता है हमेशा कि संगीत और मनोरंजन के साथ साथ किसी ऐसे विषय पर आपसे बातचीत की जाए जो हमारी जानकारी में कुछ ना कुछ नया इजाफा करे, सोचने को एक नया नज़रिया दे, और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी कहीं ना कहीं वो जो विषय है, वो जो टॉपिक है, वो जुड़ा हो। तो अगले एक घंटे तक साथ रहिए, क्योंकि गीतों की मिठास के साथ साथ बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, यह 102.6 FM रेनबो, मैं हूँ गीता। आज का टॉपिक बता देती हूँ, वो शायद हर घर की कहानी है, हर परिवार की कहानी है, और हर पेरेंट से कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा है, वो जो विषय है, वो जो टॉपिक है, वो जुड़ा हुआ है। तो जनाब, सवाल यही है, टॉपिक यही है कि क्या हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे रहे हैं, या फिर अनजाने में उनका बचपन उनसे दूर कर रहे हैं। मैंने कहा अनजाने में, जानबूझकर कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा ज़िंदगी में अच्छा करे, आगे बढ़े, कॉन्फिडेंट बने, और उसे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो शायद उन्हें यानी पेरेंट्स को नहीं मिली। इसलिए आज पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, स्पोर्ट्स क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस और न जाने कितनी सारी एक्टिविटीज़ से जोड़ देते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है, जो उसकी जो डिमांड है, वो ये है कि कॉम्पिटिशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा बोल ली। तो सवाल यही है, एक बार फिर से दोबारा से आप सुन लीजिए, क्या हम अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे रहे हैं, भविष्य दे रहे हैं, या फिर अनजाने में उनका बचपन उनसे दूर कर रहे हैं। जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको तो पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, लेकिन जो नए दोस्त बनते हैं, नए दोस्त जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, और अगर आप मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, feedback@gmail.com। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए, तो फटाफट से मैसेज कीजिएगा, राइट?

राकेश ठाकुर जी मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं, पहले से स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है, तो इस बदलते परिदृश्य में बच्चे को उसी माहौल में ढलने की ज़रूरत है। आज के मोबाइल युग में इसका नुकसान तो हो रहा है, पर बच्चे के बचपन के साथ अपॉर्चुनिटी भी, अवसर भी बहुत मिल रहे हैं। सही लिखा है आपने, अगर बच्चों को अवसर नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए शायद पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो उनकी चिंता और प्यार का ही एक रूप है। तो जनाब

बैलेंस कहाँ है? क्या बच्चों को डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों की ज़रूरत है? क्या उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना ज़रूरी है, या बचपन को बचाए रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इन दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता जहाँ बच्चे सक्सेसफुल भी बने और उनका बचपन भी मुस्कुराता रहे? मेरा सवाल बस इतना सा है। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या आज के बच्चों का बचपन पहले जैसा नहीं रहा? क्या हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बिजी बना रहे हैं, या फिर बदलते समय की यही डिमांड है?

एक मैसेज और आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा ना जगह का नाम लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने लिखा है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके कारण बच्चों का बचपन छिन रहा है। और एक चीज़ जो कि मुझे बहुत परेशान करती है वो ये है कि पर्यावरण की जो स्थिति है आजकल, क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ न्याय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने ये मतलब मैसेज भेजा है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका ये जो है पर्यावरण वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम अपने प्रोग्राम में एक टॉपिक बना के इस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने लिखा है कि आजकल बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की वो बढ़ गई हैं, बिल्कुल सही लिखा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दौड़ में बच्चों के पास सिर्फ बच्चा बने रहने का समय बच रहा है या नहीं। कभी बचपन का जो मतलब होता था ना, वो होता था कि शाम होते ही दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करना, बाहर निकल जाना, साइकिल चलाना, बिना किसी वजह के हंसना। छुट्टियों की जब होती थी बहुत ही बेसब्री से सबको समर ब्रेक का इंतज़ार होता था। आसमान में उड़ते बादलों की के बीच एक अपनी एक अपना अलग ही इमेजिनेशन हम लोग करते थे। आज के बच्चों के पास शायद गैजेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन भी है, एक्सपोजर भी है, लेकिन क्या उनके पास उतना फ्री टाइम है? शायद नहीं। पर्सनली मुझे कभी कभी लगता है कि हम बच्चों को हर चीज़ सिखाना चाहते हैं, कोडिंग भी सिखा, कम्युनिकेशन स्किल भी सिखा, स्पोर्ट्स भी, म्यूज़िक भी, लेकिन क्या हम उन्हें बोर्डम का मज़ा लेना भी सिखा रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटिविटी वहीं से जन्म लेती है जब हम खाली होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी सच है दोस्तों कि समय बदल चुका है, आज अगर बच्चों को अवसर नहीं मिलेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए शायद पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो उनकी चिंता और प्यार का एक रूप है। गीता जी, सुहानी शाम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। लिखते हैं, आज के आधुनिक दौर में हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी बात पर उन्हें फ़ोन दे देते हैं, फिर उनकी आदत में वो शुमार हो जाता है और फिर वो पढ़ते कम हैं और फ़ोन ज़्यादा देखते हैं। यही वजह है कि हम बच्चों को एक गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत है हम बच्चों को थोड़ा रोने पर फ़ोन न दें, उन्हें वक्त दें, यकीनन वो उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। लिखने वाले हैं शमशुल कमर राही, फैंटास्टिक मैसेज, बिल्कुल सही लिखा। आजकल पता है क्या छोटे छोटे बच्चे होते रो रहे होते हैं, बहुत छोटे गोद के बच्चे, उनको भी रील्स देखनी होती हैं और पेरेंट्स उनको थमा देते हैं, भाई चलो तुम रील्स देखो और हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। अरे थोड़ी देर रोने दीजिए बच्चे को, रोने से एक्सरसाइज होती है बच्चे की, पता है आपको। थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत मैसेज लिखने के लिए।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:20। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ गीता और ये है 102.6 FM। एक और खूबसूरत गाना आपके लिए।

वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत गाना शान की आवाज़ में। आई होप आज की प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ येस, प्लीज़ डू राइट इन टू feedback@fmrainbow@gmail.com राइट नाउ, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है, आपका जो प्यार है, वो हमारे प्रोग्राम को और भी ऊपर तक ले जाता है। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है, प्रदीप सलूजा जी जुड़े हैं जनकपुरी न्यू दिल्ली से, लिखते हैं सत श्री अकाल आरजे गीता जी, आपको भी बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। हर पेरेंट्स और माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी टॉप करे, इसलिए हर टाइम उनको यही कहते हैं बेटा पढ़ लो ताकि वो कुछ बन जाए, और इसी कारण कुछ हद तक उनका जो बचपन है वो बुक्स में और कॉपी किताबों में बीत जाता है। आपने बिल्कुल सही लिखा, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत तरक्की करे, ज़िंदगी में बहुत नाम कमाए, शोहरत कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारा बचपन है ना, बचपन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं, बचपन को जीना मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन दोबारा आ जाएगा। गुड्डू धाकड़ जी लिखते हैं कि अनजाने में या जानबूझकर पर समय की मांग भी यही है कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, बिल्कुल सही लिखा है आपने, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही मजबूर हो जाते हैं बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए। जो डेडिकेशन है, जो त्याग है, मेहनत है, और कई सारे समझौते करने पड़ते हैं पेरेंट्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दौड़ में, ये जो कॉम्पिटिटिव युग है, इस दौड़ में कहीं उनका बचपन पीछे छूट जाता है? ये छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। इसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है ना जितना पढ़ाई लिखाई। और आखिर ये जो नौकरी है, ये सब अच्छा घर, बड़ा घर, करियर, ये तो बाद में होता है ना, तो बचपन को क्यों छीन लेते हैं हम लोग, है ना? वो मिट्टी में खेलना, वो बेफिक्र होकर हंसना, दोस्तों के साथ शरारतें करना, और बिना किसी चिंता के वो सब सपने देखना, ये पल दोबारा लौट कर नहीं आते। आफ्टर ऑल चाइल्डहुड इज़ नॉट अ रिहर्सल फॉर लाइफ, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चों को सफल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें खुश रहना सिखाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? रंजीत कुमार मंडल सिक्टी अररिया बिहार से जुड़े हैं। वर्तमान समय में बच्चे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें अतिरिक्त गतिविधि करने का समय ही नहीं मिलता। वे हर समय स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन में लगे रहते हैं, और जब इससे फुर्सत मिलती है तो मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब मोबाइल में बिजी रहते हैं। ठीक कहा, सोचने की बात है। इस पर मैं टिप्पणी क्या करूँ, मोस्टली जब भी प्रोग्राम में आती है, कुछ ऐसे विषय लेकर आती हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी को इस बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं ये सभी हमको, और हमारी तरफ से भी हम आपको नमस्ते और गुड इवनिंग कहना चाहेंगे। लिखते हैं कि आज के बच्चों का वो बचपन नहीं है जो बचपन हमने देखा है। हमारी आउटडोर गेम्स गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे खेलने होता था। इंडोर गेम्स में कैरम, लूडो और कॉमिक्स पढ़ना, अंताक्षरी खेलना और चिड़ी उड़, तोता उड़ खेलना होता था। वाकई में बचपन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी शैतानियाँ आपके मैसेज ने याद दिला दी। बिल्कुल सही बात है, ये जो बचपन है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। आप उनको बचपन जीने दो, जब वो बहुत छोटा होता है, 2.5 साल में ही हम प्लेवे में उनको डाल देते हैं, क्या मतलब है? प्लीज़ बचपन से खिलवाड़ मत कीजिएगा। और मुझे लगता है ये जो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, आज आप सोच रहे होंगे कि मैसेजेस कम ले रही है गीता और अपनी बातें ज़्यादा शेयर कर रही है, कोई बात नहीं। मेरे दिल में ना एक सैलाब सा उठ रहा है, मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ सॉरी। और मुझे लगता है ये जो सब इतना चल रहा है ना आजकल, उसकी वजह से बच्चों, आज के जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ही रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी ज़्यादा दिखाते हैं। अक्सर हम इसे उनकी आदत या बदतमीज़ी समझ लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इसके पीछे लगातार बढ़ता हुआ जो एक प्रेशर है, मुझे लगता है पढ़ाई का और कॉम्पिटिशन का और हर प्रतियोगिता में आगे रहने का, कहीं ना कहीं उसका असर है।

दर्शना जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम लिखते हैं, बेहतर कल की चाह में आज को मत खोने दो। वाह, बेहतर कल की चाह में आज को मत खोने दो, मोबाइल और गेम की लत में सपनों को मत सोने दो। गरीबी हो या मजबूरी, पढ़ाई से नाता न टूटे, बच्चों के उज्जवल भविष्य का हर हाल में दीपक चले। बहुत ही खूबसूरत, आप वैसे हमेशा ही बहुत अच्छा लिखते हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद सरफराज आलम, ये खूबसूरत और प्यारा सा मैसेज करने के लिए।

प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से जुड़ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं हमारे दोस्तों के लिए। लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ चारों ओर हरियाली और पावन नदी राम गंगा बहती है। वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत जगह आप रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के भविष्य की फिक्र तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ आज भी सब पर्यावरण और अपने संस्कारों के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चे आज भी अपने बड़ों के सिखाए हुए सदमार्ग पर चलते हैं और दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं, इसलिए सभी जीवन में बहुत कामयाब हैं। थैंक यू सो मच, आपने सही लिखा है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बच्चों को अनुशासन की और डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें थोड़ी समझ, थोड़ी समय और थोड़ा सुकून भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ सफल होने की नहीं बल्कि खुश और मानसिक रूप से हेल्दी रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच प्रेमचंद प्रेमी जी, आपने बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी हैं।

रामधारी अवाना जुड़ गए हैं गांव ढाड़ी कुतुबपुर तहसील और जिला हांसी हरियाणा से। बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिखते हैं कि बदलते समय के साथ बच्चों के जो तौर तरीके हैं और गैजेट्स तो बदले ही हैं, लेकिन पेरेंट्स की बढ़ती अपेक्षा

कक्षाएं और बड़े बड़े बुजुर्गों की जो संगति का अभाव भी उनके व्यवहार में आए बदलाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और इन्हीं भावनाओं को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखते हैं कि वो धूप में खेल कर काले हुए, वो धूप में खेल कर काले हुए, हम स्क्रीन देख कर पीले हुए, उनकी जेब में कंचे खनकते थे, हमारी जेब में नोटिफिकेशन बजते हैं, वो माँ की एक नज़र से डरते थे, हम माँ को ही एआई से जवाब करते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। उनके पास कहानियाँ दादी की थी, हमारे पास कहानियाँ यूट्यूब की हैं, वो टूटे खिलौने जोड़ लेते थे, हम नया वाला ऑर्डर कर लेते हैं, वो चांद को मामा कहते थे, हम चांद पर लैंडिंग देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज नहीं है मेरे पास ही, थैंक यू सो मच रामधारी जी। राजेश भल्ला कंकर खेड़ा मेरठ से जुड़ गए हैं, लिखते हैं शुभ संध्या, आज का जो विषय है बहुत ही मार्मिक है, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, माता पिता कुम्हार की तरह मिट्टी को गूंधते हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप गलत डांटते हैं। छोटा सा मैसेज लेकिन दिल में घर कर गया, थैंक यू सो मच। देहरादून से आलोक पवार और मिनी जुड़े हैं, लिखते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल सच, प्रतिस्पर्धा की होड़ में बच्चों का बचपन छिन रहा है। अमूमन बच्चे जो होते हैं अपने पारंपरिक खेल से दूर हो रहे हैं, लिहाजा बच्चों पर कंपटीशन का दबाव नहीं डालें और संस्कारित बनाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ट्रू, थैंक यू सो मच।

0: भेरूलाल वाकरतड़िया धाकड़ जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। लिखते हैं कि बच्चों को किताबी कीड़ा न बनाएं, उन्हें उनकी मर्जी से लिखने पढ़ने और खेलने का मौका दें। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को एक और ट्यूशन की नहीं बल्कि माता पिता के साथ बिताए कुछ बेफिक्र पलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
1: दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़े हैं। लिखते हैं, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। आज का टॉपिक बच्चों के विषय पर बेहद गंभीर है। हमारे यहाँ कहना है कि आज की तारीख में बच्चों को हम बेहद बिजी बना रहे हैं और उनका बचपन कहीं मोबाइल और कहीं लैपटॉप में खोता चला जा रहा है। आउटडोर गेम्स सब उनसे जुदा हो गए हैं और ऐसे में बच्चों के विकास पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वही तो मेरा कहने का मतलब वही था। मैं जैसे अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्या आज के बच्चों के पास यादें बनाने का उतना मौका है जितना हमारे पास था? शायद नहीं।

महिंदा सुल्ताना जम्मू एंड कश्मीर राजौरी से जुड़ी हैं। लिखती हैं कि आज के पेरेंट्स पहले एरा से कहीं ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे इमोशनल सपोर्ट वगैरह, पर वहीं अनजाने में कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे ओवर प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है कि बच्चे रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल नहीं कर पाते।

क्योंकि अगर बचपन में स्ट्रगल नहीं किया तो बाद में ब्रेक डाउन हो सकता है। यूजुअली पेरेंट्स गलत नहीं सोचते, बिल्कुल ठीक कहा है, अपने बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी है। थैंक यू सो मच।

हीरामणि वर्मा जुड़े हैं दतरंगी भाटापारा से, लिखते हैं, बच्चों का बचपन न छीने, पढ़ाई के लिए अनावश्यक मानसिक दबाव न बनाए रखें परीक्षा के समय, और कभी कभी हम पेरेंट्स कहीं का गुस्सा कहीं और पर भी निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों से उनके दोस्त बनकर रहें, उनकी ख्वाहिशें को टटोलें और उस अनुरूप उनका मार्गदर्शन करें, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल सही लिखा, एक मैसेज में आपने पूरा सार लिख दिया है, थैंक यू सो मच।

नवलू वरक गोवा से जुड़े हैं, थोड़े से नाराज हो गए कि मैंने 6:31 पर मैसेज किया था, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। बीच में मेरा जो मैसेज वाला बॉक्स है ना दोस्त, वो हैंग हो गया था, तो कोई मैसेज खुल ही नहीं रहा था, इसलिए आज मैसेजेस ऊपर नीचे हो गए थे। तो कई बार हो जाता है टेक्निकल एरर। लिखते हैं, गुड इवनिंग, आपको भी प्यारा सा नमस्कार, मैं एफएम रेनबो सुन रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वाकई में लाजवाब है। हमारा बेटा थोड़ा सा शरारती है, मानता ही नहीं है, शरारतें करते रहता है। आज की प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। आपका बेटा अगर थोड़ा सा लिखा है ना, थोड़ा शरारती, तो बच्चे होने ही चाहिए। जब बच्चा शरारत नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा।

वेल, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम स्टूडियो क्लॉक 6:54। 6 मिनट है। मुकेश रावत जी दिल्ली से कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और आपको मेरा नमस्कार। प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव आ गया है, अंतिम गाना चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश में उन्हें जिंदगी

छोटे छोटे जो अनुभव हैं उनसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हारना, इंतज़ार करना, बच्चों से नाराज़ होना या फिर मान जाना भी बचपन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि पहले सब बेहतर था उस ज़माने में और आज सब गलत है। हर दौर की एक अपनी बहुत ही खूबसूरती होती है, एक अच्छाई होती है। बस सवाल इतना सा है कि टेक्नोलॉजी और कंपटीशन और जो ये अचीवमेंट्स हैं उसके बीच में हमारा जो बचपन की मासूमियत है वो कहीं थोड़ी सी पीछे छूट रही है। तो बस इस पर थोड़ा सा विचार आप करेंगे। इस गाने के साथ आपको टाटा बाय बाय कहूँगी, और आप तमाम जितने भी मेरे लिसनर हैं, बहुत सारे नाराज़ भी हो जाते हैं, उनसे माफ़ी चाहूँगी कि कुछ मैसेजेस मैं ले भी नहीं पाती हूँ। 7 बजे हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद आपके साथ उत्कर्ष होंगे, और इस गाने के साथ टाटा बाय बाय, 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय।

0: मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: Peace and stability in the region.
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर ट्यूनिंग इनटू हिट्स एंड मेमोरीज विथ मी उत्कर्ष शरण। एंड एज वी एंटर 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी, लेट्स रीगेल यू विद एन एवरग्रीन हिट दैट हेल्प्ड प्रोपेल डिस्को टू द लाइमलाइट। स्टेन अलाइव बाय द बीजीज।

0: in Othello. And dancing is a bit of both. And so, all of a sudden, it's time for a little break. But we'll be right back, so stay tuned.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर.
0: Dancing is eternal, but there is a memory almost ancestral. Folk, the earliest expression of popular music, the ultimate tunes awaiting its ultimate medium for aeons, and it came in the form of the radio. And so, here's one of Simon and Garfunkel's radio hits, Mrs. Robinson.

0: It's time for our last break for this hour, but it's not the end of the program yet. There are more tunes to come. So stay tuned and we will be right back.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
9: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
10: मंगल भवन मंगल हारी,
11: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: It's near the end of our time together, and so, having cruised through genres and artists, here's one last debut hit that made its artists what they are today, and one of the rare Eurovision winners with a global appeal. Here's Waterloo by ABBA.

0: फुटबॉल मतलब एक ऐसा खेल जो पीढ़ियों और सदियों से पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल सादगी और बेपनाह जुनून के दम पर लोकप्रियता के शीर्ष पर बना हुआ है। महज 90 मिनट का ये खेल स्टेडियम में हर मूव के साथ गूंजती फुटबॉल के दीवानों की दहाड़ और अपनी टीम के प्रति गहरी वफादारी का नायाब नमूना रहा है। सच कहें तो इस खेल में युद्धों को रोकने और राष्ट्रों को एकजुट करने की ताकत भी है। फीफा वर्ल्ड कप राष्ट्रीय टीमों के लिए फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 1930 में शुरू हुए टूर्नामेंट का 23वां वर्ल्ड कप बस कुछ घंटे में शुरू होने वाला है। पिछले 96 सालों से यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जा रहा है, सिवाय 1942 और 1946 के, जब दूसरे विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने इतिहास के सबसे बड़े और अभूतपूर्व सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। अमेरिका इस बार न केवल फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है, बल्कि वह इसे नए हॉलीवुड पैकेज में ढालकर दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। कॉर्पोरेट थीम वाले फैन फेस्टिवल से लेकर मशहूर हस्तियों के हाफ टाइम शो और हॉलीवुड शैली की ब्रांडिंग तक, अमेरिका ने फुटबॉल को एक लार्जर देन लाइफ इवेंट बना दिया है। पहली बार मल्टी सिटी काउंटडाउन कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। केवल एक ओपनिंग समारोह के बजाय अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 3 अलग अलग समारोह होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर मेगा कॉन्सर्ट भी होंगे जिनमें ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। इन बदलावों ने वर्ल्ड कप जैसे पारंपरिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अनुभव को पूरी तरह से एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट में बदल दिया है। वैसे फीफा विश्व कप 2026 की पहली विसिल भारतीय समय के अनुसार आज आधी रात को बजने वाली है। इसके साथ ही फुटबॉल प्रेमियों का 4 साल का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अमेरिका के साथ मैक्सिको और कनाडा इसकी सह मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले से विश्व कप का जुनून परवान चढ़ने वाला है और फिर 19 जुलाई तक सारे जहान पर फुटबॉल फीवर तारी हो जाएगा। मैच से 90 मिनट पहले रंगारंग उद्घाटन समारोह होगा, उसी दौरान विश्व कप 2026 के औपचारिक शुरुआत की घोषणा होगी और फिर इतिहास के सबसे बड़े और भव्य संस्करण में अपनी बादशाहत साबित करने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था, लेकिन फीफा ने वैश्विक भागीदारी बढ़ाने और अधिक देशों को मौका देने के मकसद से इसका विस्तार किया है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि फीफा पुरुष विश्व कप में ये पहली बार हो रहा है जब 3 देश साझा मेजबानी कर रहे हैं। कुल 16 शहर मैचों को होस्ट करेंगे, जिनमें वैंकूवर से लेकर मैक्सिको सिटी और मियामी तक शामिल हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मैच कराएगा, खासकर क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी नॉकआउट मैच उसी के स्टेडियमों में होंगे। मैक्सिको सिटी का प्रसिद्ध एस्टेका स्टेडियम 3 अलग अलग विश्व कप में मैच होस्ट करने वाला पहला स्टेडियम बनेगा। यहाँ 1970 और 1986 में भी मैच हुए थे। 2026 में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी यहीं खेला जाने वाला है। इस स्टेडियम में पेले की ब्राजील ने 1970 और मैराडोना की अर्जेंटीना ने 1986 में विश्व कप फाइनल जीते थे। पेले की याद में स्टेडियम के बाहर हाल ही में उनकी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं और 39 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था। 48 टीमों को 12 समूहों में बांटा गया, जिनमें प्रत्येक समूह से 4-4 टीमें शामिल हैं। हर समूह से शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि सभी समूहों में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से टॉप 8 टीमों को भी अगले दौर का टिकट मिलेगा। इस बदलाव के साथ नॉकआउट चरण में पहली बार राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा, जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो:
1: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup, so it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time, and this trophy being awarded in a few weeks, the most iconic trophy in the world, the most incredible cup, a trophy and a ball that makes people dream all over the world. The 23rd World Cup in the history of FIFA is a World Cup which is breaking

0: हम हर बार फीफा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि फीफा का अर्थ है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये संस्था दुनिया भर में फुटबॉल को संचालित करती है और हर 4 साल में फीफा विश्व कप का आयोजन करती है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अब कुछ फेवरेट टीमों और खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना मौजूदा फीफा वर्ल्ड चैंपियन है। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। उसने कतर में खेले गए फाइनल में फ्रांस को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। पिछला फाइनल मैच 3-3 पर खत्म हुआ और उसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में कमाल किया और 4-2 से मैच को अपने नाम किया था।
1: Incredible scenes here. And in 2022, the world champions are Argentina.
0: इस बार भी ये टीम सबसे मजबूत दावेदारों में शुमार है। उसके अलावा फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड पर भी नजरें होंगी। इन सभी 5 टीमों के पास वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है और वे टूर्नामेंट में पसंदीदा टीमों के तौर पर उतर रही हैं। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाली दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के कैलियन एम्बापे सबसे बड़े आकर्षण होंगे। ब्राजील के नेमार जूनियर, इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम, स्पेन के लामिन यमल, नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड और ब्राजील के विनिसियस जूनियर के प्रदर्शन पर भी फुटबॉल दुनिया की निगाह रहेगी। वैसे तो टूर्नामेंट में इस बार फिर सीधे तौर पर भारतीय टीम की सहभागिता नहीं होगी, लेकिन भारतीय मूल के 4 खिलाड़ी अलग अलग टीमों के लिए फुटबॉल की अपनी स्किल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के लिए मिडफील्ड में कमाल की ड्रिबलिंग के जरिए अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। उधर पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में निशान वेलुपिल्लई फॉरवर्ड और विंगर के तौर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। कतर के लिए 19 साल के वंडर किट तहसीन मोहम्मद जावेद का जादू देखने को मिलेगा। वो अपनी टीम के लिए विंगर और स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हैं। उधर डीआर कांगो के लिए सैमुअल मोतोसामी मिडफील्ड में अपने पैरों का जलवा दिखाएंगे। जब इन 4 खिलाड़ियों का पैर फुटबॉल के साथ कदम ताल करेगा तो निश्चित ही हर भारतीय का दिल भी धड़केगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संभावनाओं के बारे में, फेवरेट टीम के बारे में और फेवरेट खिलाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनादि बरुआ?
2: कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है। अर्जेंटीना आ सकती है, बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है इस बार, ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, तो कम आंकड़ा बड़ा मुश्किल है। बोल नहीं सकती कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है। अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो या आप ब्राजीलियन प्लेयर नेमार लोग, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए। इस बार अच्छा खेल के जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं तो याद रहेगा, क्योंकि इसके पहले जब मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था तो मैराडोना ने, माइकल प्लेटिनी ने, इन्होंने छाप छोड़ के गए हैं। 86 मेक्सिको फुटबॉल ये वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये अगर लास्ट वर्ल्ड कप भी खेलते तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे।

बात कर लेते हैं अब तक के विजेताओं की। जहां तक चैंपियन टीमों की बात है, ब्राजील ने सबसे अधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। जर्मनी और इटली 4-4 विश्व खिताब जीतकर दूसरे नंबर पर हैं। अर्जेंटीना 3, फ्रांस 2, उरुग्वे 2 और इंग्लैंड स्पेन अब तक 1-1 बार चैंपियन बने हैं।

तो चलिए आप भी अपने बूट कसकर वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि शिद्दत के साथ अपनी फेवरेट टीम को चीयर जो करना है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हर मुंह पर ताली जो बजानी है और हर गोल पर शोर से अपने घर और मोहल्ले को फुटबॉल के जोश से लबरेज जो करना है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:12 हो गए हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि पिछले प्रोग्राम ट्रिपल एम में आपने जिस तरह से अपना प्यार दिया, आपने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे और उस विषय पर अपने दिल की बात मुझ तक साझा की, उसके लिए एक बड्डा वाला थैंक यू तो आपका बनता ही है। हालांकि समय की जो सीमा है वो रहती है, उसकी वजह से बहुत सारे मैसेजेस ऑन एयर नहीं ले पाई मैं, और कुछ मैसेजेस रह भी गए, उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी बोलूँगी, क्षमा मांगूँगी। आखिर में रेडियो में वक्त की पाबंदी भी होती है, और इसी बीच मुझे भी आपसे कुछ बतियाने का मौका मिलता है ना। एंड बिलीव मी, एवरी सिंगल मैसेज दैट रीचेज मी is very very valuable and makes this journey even more beautiful and special. तो चलिए अब वक्त की सारी भाग दौड़, तनाव, दिन भर की थकान को थोड़ी देर के लिए करते हैं छूमंतर, because it's time for music मस्ती on FM Rainbow 102.6। मैं हूँ गीता।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:55 हैं और स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही कि अब आपको और ही म्यूज़िक मस्ती का जो प्रोग्राम है आगे बढ़ाया जाए। ताहिर आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा प्रोग्राम लेकर, आपकी याद आती रही, आप उनके साथ रहिएगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी। गुड नाइट।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, क्या हाल चाल। हर शाम अपने साथ कुछ नया लेकर आती है, कुछ लम्हे जो गुजरते हुए भी ठहर जाते हैं और कुछ एहसास जो बिना आवाज के दिल तक पहुंच जाते हैं। कभी

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के साथ है। प्रोग्राम चला है आपकी याद आती रही। कभी कभी कोई चेहरा याद नहीं आता, बस उसके साथ गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है और फिर लगता है जैसे जिंदगी ने एक पुराना सफा खोल दिया हो।

कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती, वो बस दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं और जब फुर्सत मिलती है तो मुस्कुरा कर सामने आ बैठती हैं।

0: जनाब, क्या हाल चाल? हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका। हाल चाल तो बहुत बढ़िया होगा। तो बहरहाल, ये एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद वापस बहुत जल्दी आएंगे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और FM रेनबो पर चल रहा है आपकी याद आती रही। तो याद तो आती है ना, हर किसी की याद आती है, हर किसी को याद आती है। अजीब बात यह है कि हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, मगर किसी की फिक्र करने की का अंदाज कभी दिल से नहीं जाता। हकीकत यही है।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर, प्रोग्राम चला है आपकी याद आती रही। याद जब आती है तो खैर अलग ही बात होती है। कुछ यादें आंसू नहीं लाती, वो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर चुपचाप दिल के पास कहीं बैठ जाती हैं, है ना।

जनाब, कभी कभी इंसान किसी को ढूंढ रहा होता है, बस एक एहसास की तलाश में होता है, नहीं? कोई पुरानी हंसी, कोई बेपरवाह सी बात, या कोई ऐसी शाम जहां दिल को सुकून मिला था। अजीब बात है ना, वक्त आगे बढ़ता रहता है मगर कुछ लम्हे दिल के कैलेंडर से कभी उतरते ही नहीं। वो वही ठहरा रहते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, और जब किसी गीत की धुन या किसी लफ्ज का सहारा मिलता है तो फिर से मुस्कुराने लगते हैं। शायद इसीलिए आपकी याद आती रही का ये सफर आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल से दिल तक सिर्फ गीतों का सफर नहीं बल्कि उन अनमोल लम्हों का भी है जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं, फिर भी वो हमसे बिछड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं बिछड़ते।

कभी कभी जनाब मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी किसी खुशी में, किसी की खुशी में खुशी ढूंढ लेना भी मोहब्बत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज बात ना करें, रोज सामने ना आए, मगर फिर भी दिल के इतने करीब रहते हैं कि उनका जिक्र ना भी हो तो उनका एहसास साथ रहता है। अजीब बात है, इंसान बहुत सी चीजें भूल जाता है, मगर जिस जगह उसे मोहब्बत मिली हो, जिस लम्हे में उसने अपनापन मिला हो जिस जगह पर, वो लम्हे कभी पुराने नहीं लगते। शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो खत्म नहीं होता, बस दिल के तह में उतर जाता है, दुआओं की शक्ल में इख्तियार कर लेता है ना।

तो आज की हसीन शाम को यहीं थोड़ा सा रोक देते हैं। कुछ गीत थे, कुछ एहसास थे और कुछ ऐसी बातें जो शायद देर तक रहेंगी याद आपको भी। मैं हूं ताहिर, आपका दिल से शुक्रिया साथ देने के लिए। लेकिन रात अभी बाकी है जनाब, रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी, 11:05 पर फिर मुलाकात होगी, गजलों के साथ, अल्फाजों के साथ और दिल और करीब एहसासों के साथ रंगे महफिल में। तब तक के लिए खुश रहिए और जो बातें दिल को अच्छी लगती हैं उन्हें संभाल कर रखिए जनाब, ठीक है? और अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे

राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोर को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग वंस मोर डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड इट्स टाइम फॉर ऑल दैट जैज विद मी उत्कर्ष शरण। आर यू फीलिंग द हेडी इमोशंस येट? इफ यू नॉट, यू विल क्वाइट सून। लेट्स बिगिन विथ यू गो टू माई हेड by Louis Armstrong and Oscar Peterson.

0: With profuse apologies, I must pause our dreamy journey for a short break. But stay tuned, and we'll be right back, cruising along like nothing happened.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7

0: Tonight isn't the most romantic of all nights. Even the moon is a waning crescent. But all you need to do is to get lost in the haze of jazz, and it'll be like it's big and bright right outside. And we'll make it so after this short break. Stay tuned.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: For those just tuning in, this is 102.6 Akashwani Rainbows, All That Jazz. And it's time to play a little jig on the strings of the heart. You've heard this song before, one way or another. So jog your memory as we play Is You Is My Baby by Louis Jordan.

0: It's hard not to fall in love with jazz, particularly when the night or the times are trying and tiring. In these times, it becomes important to lay back and take a break every now and then. And so, allow us a short break too, and we'll be right back.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है.
4: ठीक है.
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हार है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित

0: नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: And with that, this has been 102.6 Akashvani Rainbows, All That Jazz, and Utkarsh Charan bids you a good night with one last song to jazz it up, Teddy Wilson's Dizzy Spells. See you soon.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।

इफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, क्या हाल चाल। रात अपने साथ फिर वही नरमी लेकर आई है सामीन। दिन भर की गर्द धीरे धीरे बैठ रही है और अब वक्त है उन एहसासों का जो शोर नहीं करते, खामोशी में ज्यादा सुनाई देते हैं। कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। मैं हूं आपके साथ ताहिर और शुरू होता है प्रोग्राम रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए कुछ गजलें, गजलों के साथ कुछ मुस्कुराहटें और उन बातों के साथ जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं। शुरुआत करते हैं इस गजल से।

कभी कभी शाम का उतरना भी अजीब होता है। दिन भर इंसान कितनी बातों में खुद को मसरूफ रखे, मगर जैसे ही रोशनी धीमी पड़ती है, दिल किसी अनजानी सी कमी को महसूस करने लगता है। ना कोई आवाज होती है, ना कोई दस्तक, फिर भी लगता है जैसे कोई बहुत अपना सा एहसास आसपास से गुजर गया हो। और फिर आदमी समझ ही नहीं पाता कि वो किसी शख्स को याद कर रहा है या उन लम्हों को जिनमें उसने सुकून महसूस किया था। शायद इसीलिए शाम से कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं और उसी से थोड़ा घबराते भी हैं, क्योंकि शाम होते ही दिल अक्सर उन्हीं रास्तों पर निकल पड़ता है जहां से लौटने में थोड़ी मुस्कुराहट भी मिलती है और थोड़ा सा गम भी।

कभी कभी इंसान किसी को भूलता नहीं, बस उसके जिक्र से दूर हो जाता है। फिर किसी शाम कोई मिसरा, कोई आवाज या कोई खुशबू दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देती है। दिल ही तो है ना संगो किश्त दर्द से, दिल ही तो है ना संगो किश्त दर्द से भर आए ना क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। और फिर लगता है कि कुछ कहानियां वक्त से नहीं एहसासों से चलती हैं।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। अजीब बात है, खुशी और उदासी एक ही दिल में रहते हैं। एक याद मुस्कुराहट देती है और वही याद कभी आंखों को नम कर देती है। रंज से ख्वार हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से ख्वार हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, शायद इसीलिए नाम इसी का नाम जिंदगी है, जहां हर एहसास को अपनी जगह मिलती है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। अभी रात हो रही है ना, रात की अपनी एक तहजीब होती है, ये जल्दी में फैसला नहीं करती।

ये थोड़ी ठहरती है, सुनती है और फिर दिल की धड़कनों के साथ चलने लगती है। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इंसान कभी तन्हा नहीं होता, उसके साथ उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब और उसकी दुआएं उसको साथ लेके चलती हैं।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, एफएम रेनबो और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगी महफिल। कभी हम किसी शख्स को नहीं, बस उसके साथ गुजरे हुए वक्त को ढूंढते हैं। वो छोटी छोटी बातें, वो बेपरवाह हंसी और वो यकीन कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वक्त का काम गुजर जाना है, मगर दिल का काम संभाल कर रखना है।

जनाब, जिंदगी अगर सिर्फ खुशियों का नाम होती तो शायद गजलें इतनी अपनी ना लगती। थोड़ा सा मिलना, थोड़ा सा बिछड़ना, थोड़ा सा हंसना और थोड़ा सा खामोश रहना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और शायद इसी मिले जुले एहसास का नाम जिंदगी है।

जनाब आखिर में बस इतनी बात है कि हर दिल के पास एक कहानी होती है जिसे वो हर किसी को नहीं सुनाता। कुछ सफ़े मुस्कुराहट के होते हैं, कुछ इंतज़ार के और कुछ उन एहसासों के जो लफ्ज़ों में पूरे उतर नहीं पाते। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर पल एक मेरी कहानी है। शायद इसलिए गज़लें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फिलहाल ताहिर यही कहेगा कि वो वक्त आ गया है कि मुझे अब जाना होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रहना, ये एक घंटा बहुत अच्छा गुजरा। किसी मोड़ पे दोबारा मिलेंगे। जब तक ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका

राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर में रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 1:05 और 52 सेकंड का, यानी कि कार्यक्रम सुहानी रात का।

कार्यक्रम सुहानी रात का आगाज हो चुका है इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे लिया हमने फिल्म साजन से। और कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: रानी देख, राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल कार्यक्रम सुहानी रात, जिसमें लेकर आते हैं हम 90s के खूबसूरत गीत।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और 2 निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 2:05 और 52 सेकंड का समय हो चला है कार्यक्रम भुलाए ना बने का।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो।
2: Hey, Tony Fernandez, baby,

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जलसा कराया आपने, अरे दुनिया में जो मशहूर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री

0: नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत वर्ष 2047 तक जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले सामग्री से बनाई जाने वाली 100 बायोलॉजिक्स आरंभ करने की योजना है, जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के दृष्टि योजना में योगदान देंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप जुड़े हुए हैं मिडनाइट मेलोडीज प्रोग्राम के साथ, यूं ही जुड़े रहिए, लौटते हैं बहुत छोटे अंतराल के बाद।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानी

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: प्रोग्राम चल रहा है मिडनाइट मेलोडीज और आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेडियो मुचल के साथ। यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।
1: Make some noise!

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने हितधारकों से कहा है कि वे भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दें ताकि तत्काल हस्तक्षेप और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और चुनाव अधिकारी ने उन्हें औपचारिक रूप से निर्विरोध विजेता घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद लिशेम्बा संजावोबा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज़ संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, तो आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का ये ट्रैक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।